आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 11, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं, आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, आइए सुने चिंतन।
1: इस संसार का कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, कीट पतंग भी दुख नहीं चाहते, सभी सुखी चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं, यानी कि उन्हें अपने पहले के कर्मों के अनुसार निर्धारित फल भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि उभय योनि है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नए कर्म करने का अवसर भी पाते हैं, इसीलिए मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को सुंदर शरीर के साथ साथ आत्मा दी है, उसकी सहायता के लिए मन

0: बुद्धि और इंद्रियां भी दी है। इनके सदुपयोग से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक विडंबना है, मनुष्य इस धरती पर जीवन भर सुख की तलाश करता रहता है और सुख उसे मिलता नहीं। आखिर कारण क्या है? आइए हम नीति की एक उक्ति पर विचार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी कि धर्माचरण से ही सुख प्राप्त होता है। कहने का आशय है कि सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना ही धर्म है। वैसे तो धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, यानी जिसे धारण किया जाए। मनुस्मृति में धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी का परित्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, सद्बुद्धि, विद्या प्राप्ति, सत्य और अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण बताए गए हैं। इन्हें जीवन में अपनाना ही धार्मिक होना है। कहने का आशय है कि यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारते, यदि हम दूसरों को क्षमा करने का गुण रखते हैं, हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और मन हमें इधर उधर नहीं भटकाता, हम चोरी की ओर आकर्षित नहीं होते, हम पवित्रता रखते हैं, हमें अपनी इंद्रियों पर संयम है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम सच की राह पर चलते हैं, हम क्रोध नहीं करते, तो हम धार्मिक हैं। हम धर्म के लक्षणों को आत्मसात जितने अंशों में करेंगे, उतने ही अंशों में हम धार्मिक बनते जाएंगे। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि धर्म का अर्थ सदाचार है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। किसी विद्वान ने कहा है, मनुष्य धर्म का फल सुख चाहता है अपने लिए, लेकिन धर्म आचरण नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, फिर भी जानबूझकर पाप करता है। अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो हमें धर्म के सही आशय को समझना होगा और धर्म अर्थात सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। धर्म के इसी भाव को आचारः परमो धर्मः भी कहा गया है, यानी आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार का मतलब सदाचार। मनुष्य के कर्म ही सुख और दुख के कारण होते हैं। वो चाहे तो सुखी रह सकता है, दुख से दूर रह सकता है। इसीलिए हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ऐसे कर्म करने चाहिए, दूसरों को भी ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए जो सबके हित में हो। इससे हमारा खुद का भी भला होगा और इस संसार का भी। तो आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि चर्चा, आज की चर्चा का विषय है जैविक खेती, आशंका से आशा तक। वाचन स्वर है सविता कुमारी का।
2: आज कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेह किसान भाई बहन लोकन, जैविक खेती बेरक मांग है। सरकार से हो पर जोर दौ रहल छथि जे बेसी से बेसी जैविक खेती कैल जाए। ऐसा बहुत लाभ है। जो कोनो तरहक मन में आशंका होवे तो ओकरा निकाल दियो, वो जैविक खेती मन लगा कर करूँ। अहाँ लोकन के ई आशंका होत है जे जैविक खेती में उत्पादन कम होत है, ओ खर्चा बेसी होत है, मुदा एहन गप नहीं है। जखन रासायनिक खेती से जैविक खेती में खेत के परिवर्तित कैल जात है, तो ओ में 3 से 4 वर्ष के समय लगते है। कारण जैविक खाद धीरे धीरे असर करते है। शुरू के 1 से 2 वर्ष में उत्पादन 70 से 80% तक भ सकते है। ओकर बाद जैविक खेती में

0: रासायनिक खेती के अपेक्षा उत्पादन बेसी भ सकैत अछि, ओ बेसी दिन धरि एहन अनुमान अछि। संगहि जैविक खेती मे लागत रासायनिक खेती सँ कम होइत अछि। एतबे नहि किसान भाई बहिन लोकनि, जैविक खेती के उत्पादन के 10-20% धरि मूल्य बेसी भेटैत अछि, खर्च कम ओ लाभ बेसी होइत अछि। पहिल आशंका किसान भाई लोकनि के ई छल, आब दोसर आशंका ई छनि जे बाजार मे जैविक खेती के उत्पाद के उपभोक्ता पसंद करथिन कि नहि। स्नेह किसान भाई बहिन लोकनि, इहो आशंका अहाँ लोकनि मन सँ निकालि लिअ, कारण आब सब गोटे अपन स्वास्थ्य के प्रति बेसी जागरूक भ रहल छथि। ओ लोकनि ई बुझैत छथि जे रासायनिक उर्वरक ओ कीटनाशक के उपयोग कयल गेल उत्पाद स्वास्थ्य के लेल हानिकारक होइत अछि, संगहि ओहिमे ओ स्वाद नहि होइत अछि जे जैविक खेती वला उत्पाद मे होइत अछि। तै उपभोक्ता एहन खाद्य पदार्थ पसंद करै छथि जे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सँ सेहो उत्तम होवै आ गुणवत्तापूर्ण होवै, अर्थात जैविक उत्पाद बेसी पसंद करै छथि। स्नेह किसान भाई बहिन लोकनि, सरकार के ई प्रयास अछि जे जैविक खेती के बेसी सँ बेसी प्रोत्साहन देल जाय। जैविक खेती के तकनीक के प्रचार प्रदर्शन व अनुदान, जैविक उत्पाद के विक्रय बाजार व्यवस्था में सुधार करब व उत्पाद के लेल बाजार के बढ़ाएब। किसान भाई बहिन लोकनि के ई आशंका सेहो छनि जे बिना प्रमाणीकरण के जैविक खेती के उत्पाद के नीक दाम भेट सकैत छनि कि नहि। एहन आशा अछि जे अपन देश के 1 अरब सँ बेसी उपभोक्ता के बिना प्रमाणीकरण के जैविक उत्पाद के प्रति विश्वास दियाओल जा सकैत अछि। विक्रेता ओ उपभोक्ता के उत्पाद के प्रक्रिया के देखा कऽ सबसँ पहिने उपभोक्ता बना कऽ जिनका ओहि पर विश्वास होइन, जैविक खेती सँ उत्पादित कोन वस्तु के मांग बाजार मे बेसी अछि। ओना तऽ जतेक खाद्य पदार्थ अछि जे जैविक खेती सँ उत्पादित होइत अछि, ओहि सब वस्तु के मांग बेसी रहैत अछि, कारण ओहिमे रासायन के अवशेष बेसी होइत अछि। रासायनिक खेती मे आइ छिड़काव कयल जाइत अछि, ओ दोसरे दिन तरकारी ओ फल के तोड़ि कऽ बाजार मे आबि कऽ बेच देल जाइत अछि, कारण जँ 10 दिन बाद फल ओ तरकारी तोल जायत तऽ ई खराब भ सकैत अछि, जाहिसँ कि बाजार मे ओकर भाव कम भ जाइत अछि। ओतबे नहि, आइ काल्हि तऽ फल ओ तरकारी के ताजा देखबा मे आबय, ओहि लेल सेहो रासायन के छिड़काव कयल जाइत अछि। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
2: समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
4: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा आज जानकारी प्राप्त कीजिए दांतों में कनकनी और इसके कारण के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार थापर।
2: दांतों में कनकनी के कारण दांत को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग जो मुंह के अंदर दिखाई पड़ता है उसे क्राउन कहते हैं तथा जो भाग मसूड़े के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। क्राउन वाला भाग इनामेल से ढका होता है तथा जड़ सीमेंट से ढका रहता है। इनामेल शरीर का सबसे बड़ा संरचना है। जब किसी कारण से इनामेल के संरचना में परिवर्तन आ जाता है अथवा सीमेंट अपने वास्तविक ढांचा में से परिवर्तन हो जाता है तो दांतों में कनकनी होने लगता है। इनामेल तथा सीमेंटम के संरचना में परिवर्तन के कई कारण है। गलत तरीका से ब्रश करना। दांतों की सफाई के लिए ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए हल्की मालिश करना चाहिए। ब्रश नम मुलायम होना चाहिए, लेकिन इस बातों का ध्यान नहीं देने पर दांतों में घिसावट आता है तथा एक समय के बाद दांत की ऊपरी सतह इनामेल नष्ट हो जाता है। ब्रश करने के लिए समय अवधि, दांतों की सफाई करने के लिए घंटों ब्रश करना जरूरी नहीं है। इसके लिए 2-5 मिनट ही उपयुक्त है। अधिक

0: समय तक ब्रश करने से दांतों में तथा मसूड़ों में घिसाव आने लगता है और ब्रश को एक महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करते करते ब्रश के ब्रिसल कठोर हो जाते हैं जो कि इनामेल और मसूड़ों के लिए हानिकारक हैं। दांतों की सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली पाउडर, दांतों की सफाई के लिए लाल मंजन, काला मंजन या किसी भी तरह का पाउडर दांतों के लिए हानिकारक है। इन मंजनों में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे दांतों पर बहुत खराब असर पड़ता है। इन पाउडर को निकोटीन मिला दिया जाता है जिससे इनके लिए निर्माता विकसित जिसके लिए एडॉप्ट विकसित हो जाते हैं। बिना इसके इस्तेमाल ही संतुष्टि नहीं मिलती। इन पाउडर के नियमित इस्तेमाल से दांत एवं मसूड़ों में घिसाव आता है, इसीलिए हमेशा पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मसूड़ों की बीमारी के कारण मसूड़ों के वास्तविक ढांचा में परिवर्तन आ जाता है जिससे सीमेंटम मुंह के वातावरण में मिल जाता है और सीमेंटम के स्नायुओं का कुछ भाग होता है जिससे जब भी ठंडा या गर्म कुछ भी मुंह में आता है इससे कनकनी होने लगता है। दांतों की ऊपरी सतह घिसने के कारण खाना खाते समय गलत ढंग से ऊपर या नीचे के जबड़े का इस्तेमाल करने से दांत के ऊपरी सतह का घिसावट आने लगता है तथा कुछ समय पश्चात दांत का ऊपरी सतह जो कि एनामेल कहलाता है घिस जाता है। एनामेल के नीचे का सतह डेंटिन कहलाता है। डेंटिन में स्नायु का संचार होता है। एक बार डेंटिन मुंह के वातावरण में आ जाता है तो किसी भी प्रकार का ठंडा या गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कीटाणु या कीड़ा लगने के कारण दांतों की सड़न का असली कारण है प्लाक। प्लाक के भीतर मौजूद कीटाणु मुख्य रूप से शक्कर और भोजन में मौजूद स्टार्च पर ही पनपते और बढ़ते हैं। ये कीटाणु एसिड तैयार करते हैं जो धीरे धीरे दांतों का इनामेल नष्ट करके दांतों में गड्ढे या कैविटी तैयार कर देते हैं और कैविटी बनने के कारण दांत की दूसरी सतह जो डेंटिन कहलाता है मुंह के वातावरण में आ जाता है और डेंटिन के मुंह के वातावरण में आते ही ठंडा और गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कनकनी के निदान। दांतों में कनकनी को रोकने के लिए विशेष प्रकार के पेस्ट या माउथवाश आता है। इन पेस्टों एवं माउथवाश के सेवन से आराम मिलता है क्योंकि इसे रासायनिक पदार्थ होता है जो कि दांत के सतह पर सुरक्षा कवच बनाता है। नष्ट या खराब हो चुकी दांतों की बनावट को विशेष प्रकार से सीमेंट के द्वारा फिलिंग करने से दांतों की कनकनी से छुटकारा पाया जा सकता है। फ्लोराइड का इस्तेमाल दांतों के आवरण में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है जो उन्हें मजबूत बनाता है और सड़न से बचाता है। फ्लोराइड का उपयोग दांत सड़ने से बचाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से नियमित दांत का सफाई करनी चाहिए। ब्रशिंग। नर मुलायम ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाने एवं मसूड़ों पर हल्की मालिश करें। इस तरह धीरे धीरे दांतों की बाहरी और भीतरी दोनों सतह साफ करें। ब्रश दिन में दो बार करें तथा 2 मिनट तक ही करें। इससे दांतों में घिसावट नहीं आएगा और दांत की सही सफाई भी हो जाएगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आज आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे दांतों में कनकनी के कारण और निदान के बारे में। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुनील कुमार थापर। ये आकाशवाणी दरभंगा है। आइए अब सुने भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। पहले देश वंदना समवेत स्वरों में।

गोस्वामी तुलसीदास की ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा और साथियों के स्वरों में। और अब लीजिए सूरदास का ये भजन हम आपको सुनवाते हैं। ये स्वर है जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

ये भजन आप सुन रहे थे स्वर्थ लता मंगेशकर का। और अब आइए सुनते हैं ये आरती मौसमी दत्ता के स्वर में।

ये था भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना के स्वर थे पुरुषोत्तम दास जलोटा, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, मौसमी दत्ता और साथियों के। कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब निवेदित है रामचरितमानस कांड।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर था ए हरिहरन का। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। लेकिन उसके पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने ये मनोभाव अपने फोन कॉल्स के माध्यम से शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 9430029353, 9430029353। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद हम अवगत करा दें आज के हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला अंजुमन। ये उर्दू कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे सुबह 9:10 पर। सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज इसी सभा में 10 बजे। मोहम्मद अजीज

और उनके साथ अन्य कलाकारों को आप सुनेंगे आज की फिल्म संगीत में इसी सभा में 10 बजे। उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे। कलाकार होंगी ढूंढूताई कुलकर्णी। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे का समय नए फिल्मी गानों का होगा। दोपहर 12:30 पर हमारी बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी संसार। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:15 पर और 2:30 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम होगा आज दिन में 3 बजे। सुनिएगा युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण प्रसारण में आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर। आज होगा अंक जागरूक गांव, ग्रामीण महिलाएं कुटीर उद्योग रोजगार का एक साधन, इस विषय पर जानकारी की बातें बताई जाएंगी। शाम 7 बजे खेती गृहस्थी में धान की उन्नत खेती के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। कुछ फिल्मी गाने सुनिए आज शाम 7:52 पर। संध्या 8:15 का समय मैथिली में हमारे कार्यक्रम सिंगरहार का होगा। आज रात 9:30 पर कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनाएंगे और रात 10 बजे का समय होगा प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अध्ययन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक 2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृ सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरेंट कप इत्यस्य 35,100तमं संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने

0: कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा ये दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण हमरा सने कुशल जी अपने स्नेही श्रोता के स्वागत नमस्कार करी छी। कुशल जी अपने के स्वागत है, नमस्कार है।
0: प्रवीण जी आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
1: जना कि अहाँ सब सब दिन सुनै छी कार्यक्रम के शुभारम्भ हम सब करै छी एकटा सुविचार से। तो आजुक सुविचार गौतम बुद्ध से लेलहुँ हम, हुनकर युक्त चयनी। वीणा के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी न छोड़ो कि उसमें से संगीत ही न निकले। तात्पर्य छलैन जे जीवन में कोनो काज एतेक उत्कंठा से

0: एतेक तेज शनि कोली जे काज उद्देश्य ओकरा रखने छी ओ बीचेमे बाधा भऽ जाए आ ओ टूटि फूटि जाए, अंग भंग भऽ जाए। जोशमे हमसब एहन काज कऽ लै छी जे होश कनि ओहि कालमे से विलुप्त भऽ जाइए, तऽ एहन काज भऽ जाइ छै। आओर तारके एतबो ढीला नहि छोड़बै बिनाके जे ओहिमेसँ कोनो सङ्गीते नहि निकलै। तैँ सम्यक विचार जीवनमे सबसँ ऊपर होइत अछि।
1: तो इसके बाद कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की, कि आज के दिन के इतिहास में, आज के दिन के पन्नों में क्यों है दिन खास। आज ही के दिन सन 1940 में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आज ही के दिन सन 1962 में अमेरिका में पहला वॉलमार्ट स्टोर आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। आज ही के दिन यानी 2 जुलाई सन 2002 में अमेरिकी व्यवसायी स्टीव फोसेट ने पहली बार गुब्बारे के जरिए अकेले दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड पूरा किया था। खेल पत्रकारों के काम को सराहने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर साल आज ही के दिन ये मनाया जाता है। यह दिन अनपेक्षित उड़ने वाली वस्तुओं यानी UFO के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
0: और आई विश्व खेल पत्रकार दिवस हो और दोसर जे कार्यक्रम के आगा लो चले छी, आई 2 जुलाई अछि और विश्व प्रसिद्ध सोराट सभागाछी आइए से आरंभ भ रहल अछि। एहि अवसर पर हम सब समस्त मिथिला मैथिली जन के से हकार संग शुभकामना दै छियनि जे ई हमर सबके जे विरासत अछि सौराट सभागाछी पंजीकरण विवाह के ओकरा अवश्य अपन नव पीढ़ी के बतावथि आ ओतः घुमावथि। तऽ आउ आइ सँ चली हमसब सौराट सभागाछी मधुबनी सदर प्रखंड में पड़ैत अछि। कार्यक्रम आगाँ बढ़बैत अब सुनै छी एहि अवसर पर एकटा सुमधुर मैथिली गीत।

0: रही जोरे बटोही जनक कानन। आओ अहू सब सभा गाछी आओ आई सब अपन धरोहर अपन अमूल्य धरोहर के नव पीढ़ी के बताओ ओकरा देखाओ और मिथिला मैथिली के आगा बढ़ाओ। संग ये गीत निक लागल अरविंद कुमार जी के पुनः सहस्नेह धन्यवाद दै छियनि गीत के लिए। इतने सुंदर मधुर सुसंगीत ओ गीत अछि जे मन गदगद भ जाइए गीत सुनकर अहूँ सबके निक लागल हैत।
1: प्रवीण जी जब आपने कहा कि गीत सुन के मन गदगद की बात, तो कोई भी कार्य को अगर मनोरंजन के साथ आप करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो ये तो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में तो हम सब कुछ संजो के लेके आते हैं, चाहे वो चर्चा का विषय हो, हालचाल हो, न्यूज़ हो या मानसून हो। तो फिलहाल अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
0: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। मिथिलाक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर विरासत ओहो अमूल्य धरोहर सौराठ सभागाछी पूरा संसार एकरा जनैत अछि। जकरा हम सब सौराठ सभागाछी के नाम से जनैत छी ओ सौराठ सभागाछी आइ सँ आरम्भ भ रहल अछि। कहबाक जे सभावास आइ सँ भ रहल अछि, आइ 2 जुलाई अछि। एहि युगमे वैज्ञानिक युग भेल, स्मार्ट युग भेल, सभागाछीक महत्व धीरे धीरे धीरे धीरे गौण होइत चलि गेल और आज उदासीनता के कागार पर ओ ठाढ़ अछि। जतय कहियो लाखों लाख आदमी पहुँच कर अपन वैवाहिक जीवन तय कऽ कऽ और ओकरा पंजीकरण सेहो करबै छलाह, ओकरा देखले दूर दूर सँ मैथिल सब अबै छलाह। ओहि सभागाछी में आई गिन चुन कऽ मैथिल सब पहुँच रहल छथि। ई अपन विरासत के राखव के जगह हुनका पास में की नहीं छनि। युग परिवर्तन भेल जनै छी, आब विवाहदान अहुना लोक एक दोसर जा के जगह जाकर तय कऽ लै छथि और आइ काल्हि तऽ नेटो सँ विवाह तय भ जाइए। यानि कहबाक तात्पर्य ई जे अपन धरोहर के नव पीढ़ी के अहाँ की देवा चाहै छी, हमर जे संस्कृत अछि ओकरा राखी, ओकरा संगे हम स्मार्ट दुनिया के सेहो राखी, तै दुनू में समन्वय बनल रहे। किए तऽ कोनो समाज के ओकर सांस्कृतिक धरोहर एकटा गहना होइ छै, आ केओ नहि अपन गहना के दोसर के देवा चाहै छी, ओकरा संजोए कर राखऽ चाहै छी जीवन भरि। तऽ आओ हम सब मिलकर सौराठ सभागाछी के पुनः जीवित कऽ कऽ ओकरा विश्व पटल पर आनि कऽ दिखाबी। एक समय छल जखन मैथिल समाज ओहिठाम मात्र जाकर विवाहदान तय करै छलाह। पूरा साल में बातचीत यदि भइयो गेल तऽ विवाह ओहिठाम

तय होइत छल, जतः वधू के लेल नीक बर तैयार भऽ कऽ ओहि सभागाछीमे बैसै छलाह आओर वधू पक्षके ग्रामीण सब समाज सब मिलकऽ हुनका सब बातचीत कऽ कऽ, हुनकर जे सङ्गे अभिभावक छथिन तिनका सब बातचीत कऽ कऽ हुनक विवाह तय कऽ कऽ ओहिठाम पञ्जीकरण होइत छल आओर ओहि दिन फेर जाकऽ रातिमे विवाह होइत छल। ओहि धरोहरके संजोगके समय छै, तऽ आउ सब मिलकऽ अपन धरोहरके संजोजी। दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के रतनपुर पंचायत के केशव ठाकुर की बेटी आराध्या ठाकुर केंद्रीय विद्यालय के 55वां क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता रीजनल स्पोर्ट्स मीट में 2026 में दिल्ली संभाग में इतिहास रच ले ली। अंदर 14 यानी 14 वर्ष से कम आयु के ई प्रतियोगिता में 3 पदक ले ली, संगे संग राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के प्रतिनिधित्व करती से गौरव सेहो प्राप्त केली। मिथिला के बेटी के लेल ऐसा निक्षण नहीं भऽ सकैत अछि। दरभंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ग्रीष्मकालीन सृजना निखार शिविर आई के युग में सशक्त आ संस्कार से पूर्ण युवती विकसित भारत के आधारशिला नव पीढ़ी के रचती। युवती जते शिक्षित अशक्त हेती भारत के नारी उत निक बनत। नव स्वागत समाज के निर्माण में युवती छात्र छात्रागण सब के भूमिका सबसे अहम भ जाए छन। तैसा हुनका नव सृजना के लेल नव कुंभकार कहल गेल छन, यानी नव पीढ़ी के रचना और ओकरा सृजन वह सब कह सकती। आत्मनिर्भर आ जागरूक युवती विकसित भारत आ सशक्त भारत के एकटा स्तंभ हेती। दरभंगा नगर निगम के कचरा गाड़ी पर त्रिपाल नहीं रहित अछि, ओहि कारण से ओहि कचरा गाड़ी से दुर्गंध पसरैत रहै छै, संगे बाट पर सेहो कचरा खसैत रहैत अछि। ओना नियम अछि जे कोनो कचरा गाड़ी या कोनो सामान बाजार में यदि जाइ छै तऽ ओकरा त्रिपाल से ढकल रहबाक चाही। एहि युग में एहन घोर लापरवाही नगर निगम द्वारा से नीक नहि लागि रहल छै आमजन के। भारत सरकार के व्यावसायिक गैस सिलेंडर सस्ता भेल, किछु राहत होयत आमजन के। पेट्रोल डीजल सेहो सस्ता भेल, पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 3 सस्ता के घोषणा भेल। दरभंगा सिंहवाड़ा डिग्री महाविद्यालय BA प्रथम सेमेस्टर के नामांकन आरंभ भेल, पहिल छात्रा बनली ललिता कुमारी। ज्ञात हो कि जै प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं छल, महाविद्यालय नहीं छल, ओहि प्रखंड में सरकार नव महाविद्यालय एहि सृजन सँ देलक है, ओहि में नामांकन आरंभ भ गेल अछि। जनकवि बाबा नागार्जुन की जयंती पर 30 का हुनकर जयंती मनायल गेल। हुनकर लेखन के प्रासंगिकता पर 30 को सीतायन भवन में चर्चा परिचर्चा भेल, दर विद्वजन सब उपस्थित भ। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वाधान में समाज सेवी प्रियंका झा के अध्यक्षता में जनकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री यानी हिंदी में बाबा नागार्जुन की जयंती स्थानीय सीतायन सभागार में श्रद्धा गरिमा के संग मनाओल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ उपस्थित अतिथि सदस्य द्वारा बाबा नागार्जुन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित के संग भेल। अध्यक्ष संबोधन में समाज सेवी प्रियंका झा कहली जे बाबा नागार्जुन केवल एक महान साहित्यकार नहीं छला अपितु जन जन के कवि छला। और उनका कविता लेखनी के माध्यम से गरीब किसान मजदूर और समाज के वंचित वर्ग के पीड़ा झलकैत छल, सामाजिक समस्या पर निर्भीकता के संग हुनकर कलम चलै छल। साहित्य आ सामाजिक न्याय जन सरोपकार के प्रेरणा दैत अछि। मुख्य वक्ता से जिला छला आपातकाल के दौर बाबा नागार्जुन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर कैल गेल लेखनी एकटा नीक पीढ़ी ज्ञान दैत अछि। आलोचना संग लोकतांत्रिक मूल्य और जनहित के रक्षा के लिए साहित्य के सशक्त माध्यम बाबा कहै छला। ओ सदैव अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध आवाज

0: उठबैत रहला तैं हुनकर प्रासंगिकता कहियो खत्म नहीं भ सकै छन्हि। और वहने सही कवि साहित्यकार जन जन के कवि और साहित्यकार बढ़े छथि। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार। हालचाल के बाद पुनः अपने सबके स्वागत है और किछ मौसम संबंधी जानकारी दो दी। जे मौसम के उतार चढ़ाव भेल अछि, मानसून कनी रुसल अछि, तै मौसम आवा के संभावना एखन एक दू दिन नै बुझाइत अछि। ओना देखल गेलै कि 4-5 जुलाई तक से हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि, कतौ कतौ पजे पातो भ सकैत अछि।
1: तो कार्यक्रम में बात करते हैं मौसम संबंधित।
2: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 5 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के

0: बात उभ सके तो ऐसी।
1: तो कार्यक्रम में बात करते हैं मौसम संबंधित।
2: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 5 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में गरज चमक वज्रपात तथा तेज हवा चलने की संभावना है। विशेष रूप से आज और कल यानी 2 और 3 जुलाई के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। वर्षा की इस गतिविधि के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि बेगूसराय जिले में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक होकर 35 से 37 डिग्री तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा में 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
0: छल मौसम संबंधी किछ जानकारी जे अनुमान हमरा से मौसम विज्ञान विभाग केंद्र से भेटत अछि। मानसून के दस्तक किसान इंतजार करे छलाह और ओ दौ रहल अछि मानसून के बारिश होयत और ओहि संग किसान के उम्मीद जागत। प्रकृति और किसान के ई जे मिलन होइत अछि जकरा हम वर्षा ऋतु कहै छी ओ एकटा प्रकृति के अनमोल धरोहर अछि। देखल गेल है जे मानसून नीक होइत अछि त किसान के मन संग हुनकर उपजायल जे फसल होइ छन सेहो लहलह करै छन। जँ मानसून बेईमानी करैत अछि त कृत्रिम पानि सँ बेसी खेती के उत्पादन प्रभावित होइत अछि, यानि किसान कनि मायूस भऽ जाइ छथि। खेती करै छथि एहन बात नहि छै जे नहि करै छथि, करै छथि। किसान तो ओकरे कहल गेल छै जे किछु होय कोनो आपदा होय प्राकृतिक होय या किछु होय बाढ़ि होय दहार होय सुखाड़ होय ओ हुनकर जे मूल कर्तव्य छनि मूल काज छनि खेती केनाइ ओ तो करबे करता।
2: प्रवीण जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी देश की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानसून है। मानसून केवल वर्षा का मौसम नहीं है बल्कि किसानों के लिए एक नई आशाओं नई सपनों और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आता है। जैसे ही आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और पहली वर्षा की बूंदें धरती को भिगोती है वैसे ही किसानों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट आती है। मानसून की दस्तक उनके लिए समृद्धि खुशहाली और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है।
0: सत्य कृषि सत्य कहलौ कृषि प्रधान देश है हमर सबके यह धरोहर बेटल है। ओना एहि युग में आप कृषि प्रधान भेलै और हम सब स्मार्टो बन रहल छी, यानी वैज्ञानिक युग में हमर नव पीढ़ी अलग नीक बात हमरा लग में आबा ओ संसाधन आबि गेल अछि ओ यंत्र आबि गेल अछि जे पहिल का जे खेती पथारी के छल ओकरा बहुतो आगा बढ़ा देलक। पहले बैल सँ या और भैंसा के या कोनो चीज सँ हमसब मनुष्य अपनो शहर पकड़ के दू आदमी घिंचे छलाह जोतै छलाह कोदारि सँ तमै छलाह तखन खेत तैयार होइ छल समय लगै छल। आब ओ ट्रैक्टर यंत्र आबि गेल से एक बढ़ि कऽ एहन एहन ट्रैक्टर यंत्र के मशीन आयले जे जे काज के लेल महीनों लगै छल ओकरा ओ सब 24 घंटा में पूरा कऽ दै छथि। तो ओ युग परिवर्तन के कारण भेल और किसान के खेती महग होइत छै। किसान के आब सरकारो कहै छै जे अहाँ जे कोनो नीक फसल करै छी आ बेसी मात्रा में तऽ निश्चित रूप सँ ओकरा से बीमा करा ली। बीमा करेला से की हेतै कोनो तरह प्राकृतिक आपदा अहाँ पर यदि आयत तऽ ओहिमे अहाँ के जे बीमा के रकम रहत से अहाँ के राहत देत। ओना किसान सब एहि के प्रति जागरूक भेला है और भऽ रहल छथि से नीक बात। वर्षा ऋतु और किसान के संबंध आदिकाल से भऽ रहल अछि। युग परिवर्तन भेल एखनका युग में यंत्र अछि किसान छथि और बीच में अछि मानसून। मानसून के इंतजार किसान गर्मी में तपिश में करैत रहै छथि हर क्षण हुनकर ध्यान उपरे रहै छनि जे कखन मेघ महाराज बादल अंत हमरा सबके।

0: हमरा सबके जमीन के एहि धरती के आच्छादित करता जैसा नव अंकुरण इस सृष्टि के एकटा नव संरचना छे जकरा गहनता में जेबे ते अहाँ सबके ओ चीज भेटत जे सृष्टि अहिना चक्र के अनुसार चले छे सर्दी गर्मी बरसात और होइ छे बसंत बहुत तरह के ऋतु होइ छे परिवर्तन होइ छे जो नहीं होइ छे तखन कहल जाइ छे के ओनाट कान सोनाट और विवाह कान लगनी यानी जे काज जखन नहीं हुआ तखन नहीं करी या दोसर छन करी ओ कारण होइत अछि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जे आइ काल्हि विश्व पटल पर पसरल अछि आ ओकरा चिंतन मनन ओहि पर भ रहल अछि ओकर कारण जनै छिए ओकर मात्र एकटा कारण जे हम सब विकसित हो के लेल अंधाधुन प्रकृति के कटाई पर्यावरण के वृक्ष के कटाई करै छी जंगल के जंगल साफ भ गेल ओहि ठम बड़का बड़का दरबार राजमहल जे कोई कल कारखाना फैक्ट्री लग गेल ओहि अनुसारे वृक्ष नहीं लागल हमू सब दसटा बीसटा किसान छी जे गाछ तो बेच लै छी लेकिन नव संरचना के लेल नव गाछ लगाबी से ओना ई जागरूकता भेटल है जल जीवन हरियाली बिहार में चल रहल अछि जे के कारण बहुतो गाछ लागल अछि और लग रहल अछि जे मूल मंत्र है प्रकृति के बचवा के तै वर्षा ऋतु वही पर निर्भर छे जत्ते सुंदर अहाँ के प्रकृति वातावरण है वर्षा उत्तीक नीक है किसान उत्ते खुशहाल है था।
1: एक बात तो है प्रवीण जी कि यदि मानसून समय पे आता है और अच्छी वर्षा होती है तो खेत लल्लहाने लगते हैं पहले फसलें अच्छी होती हैं और फिर किसानों की आयों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मानसून कमजोर पड़ जाए या वर्षा असामान्य हो तो किसानों को इसका भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
0: स्वाभाविक छे अहाँ प्रकृति पानि देलक अहाँ के ओहिना आबि गेल बेसी दै छे तो ओहो नुकसान होइ छे खासकर उत्तर बिहार में जे जलकर क्षेत्र अछि ओहिमे बेसी पानि भेला के बाद कोसी कमला सब उफनि उठै छै अब धारा समूह के नेपाल के जे नदी सब छथि ओ सब विकराल रूप धारण कऽ कऽ एक जगह आबि कऽ एहि क्षेत्र के पाटि दै छै पानि सँ सेहो नीक नहि होइ छै तऽ कहबाक छै सुखारो नहि नीक आ बाढ़िओ नहि नीक हम आइ बुद्ध के सुविचार कहने छलहुँ हैं जे अति सेहो नहि नीक होइ छै आ अल्प सेहो दुखदायी होइ छै तै सम्यक धारा में चलबाक चाही मानसूनो ओतबे बरसे जते आवश्यकता छे नहीं तो कुसियारक रस बेसी भेला पर कुसियारक एकटा पोर फाटि जाय छे आ मुंह बिदोही दे छे तो कहबा तात्पर्य ई है कुशल जी जे कोनो एहन काज हम सब करै छी तो ओहि उद्देश्य से करै छी जे हमर अर्थ और अर्थ संग जुड़ल कार्य हुआ खासकर कृषक जन हुनका सबके आमदनी कतौ से कृषि कार्य से होइ छनि कृषि कार्य करै छथि ओहि से हुनकर अर्थव्यवस्था चलै छनि जे उत्पादन होइ छै बाजारीकरण होइ छै और बाजारीकरण द्वारा हुनका अर्थ होइ छनि ई एकटा सो माने चक्र छै एहि चक्र के किसान देखै छथि तै हम यही कहै छी जे मानसून से पहले कनी सतर्क भ जाय किसान से नीक बात मानसून नजदीक आबि गेलै किछु वर्षित वर्षा भेला किछु और होयत अपन अपन कृषि कार्य के लेल जे आगा तैयारी है ओ अहाँ सब कऽ लेने हैब आ ओहिमे सबसे पैघ अहम भूमिका निभै छै धानक बीया बहुतो किसान धानक बीया बाग कऽ लेने छथि तैयार छथि ऊपर नजर छनि जँ ऊपर से बारिश कम होयत तऽ किसान आइ काल्हि बोर्डिंग दंगपल नहर पोखरि सँ पटबै छथि लेकिन ओहिमे लागऽ वाला ईंधन पर किसान के खर्च जे छनि व्यय जे छनि ओ बेसी भऽ जाइ छनि से दुखक कारण होइ छै ओना बेसी रौदी भेला पर डीजल के सेहो सब्सिडी बिहार सरकार दैत रहल अछि और दैत रहत ई आशा करै छी।
1: तो प्रवीण जी आगे हम लोग इसी विषय पे और चर्चा करेंगे फिलहाल अपने कार्यक्रम में सुनते हैं एक फिल्म संगीत।

बहुत सुंदर गीत, मनमोहक और शब्दार्थ एहन छल जे जाहिपर हमसब एखने चर्चा करै छलहुँ जे गाँव यानि एखनो गाम गाम होइत अछि, ओकर प्रकृति ओकर छटा मन भावन होइ छै। आ यदि युवा छी तऽ कखन कतौ मन भावि जायत, कोन चीज भावि जायत से नहि कहल जा सकैत अछि। प्रकृति संग हमरा सब जुड़ल छी और प्रकृति के जे सबसँ बेसी नजदीक रहै छथि ओहरे छथि सुदूर ग्रामीण में बसय वाला हमर किसान भाई बहिन सब, और हुनका जुड़ाव एहन रहै छनि

0: जे ओ प्रकृति संगे रहै छथि और चाहै छथि या हमर प्रकृति के केओ नुकसानो नहि करै। और गाँव में सब किछु होइ छै, एकटा युवक के युवती भेटै छै, फिर चांदो ओहि ठाम सँ देखाइ छै, पहाड़ियो ओहि ठाम सँ देखाइ छै, और लोक धुन पर नाचा वाला जे लोक कलाकार होइ छथि से ओहि ठाम देखाइ छै, और अपन सांस्कृतिक विरासत के क्षण के केना केना एक एक पल जियो के छै सेहो हमरा गामे में भेटैत अछि। तो ओहिमे किसान बसै छथि, ओहि किसान के हम सब गप कर रहल
1: बात कर रहे हैं कि मानसून का आगमन किसानों के लिए कृषि चर्चा का शुरुआत का संकेत ही होता है। वर्षा के साथ ही किसान खेतों की जुताई बुआई और अन्य कृषि कार्यों में जुट जाते हैं। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास तथा दलहन जैसी खरीफ फसलों की बुआई मुख्य रूप से मानसून के दौरान ही होती है। और समय पर हुई वर्षा बीजों के अनुकरण और पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। किसानों की उम्मीदें केवल अच्छी वर्षा तक ही सीमित नहीं होती, वे यह भी चाहते हैं कि पूरे मौसम में वर्षा का वितरण संतुलित रहे। यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि फसलें नष्ट हो जाती हैं। वहीं यदि वर्षा कम हो, लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो खेतों में नमी के कारण फसलें सूखने लगती है। इसलिए किसानों के लिए नियमित और संतुलित मानसून सबसे अधिक लाभदायक होता है।
0: एकदम सत्य कहलहुँ, अहाँ हम चर्चा ओकरा केने छलहुँ जे ने बेसी आ ने कम सम्यकमे सब चीज नीक लगै छै, जीवन होय ओहो सम्यके नीक लगै छै। बेसी भेटला पर बहुतो आदमी से इम्हर उम्हर इठलाय लगै छथि, एकटा अहम हुनकामे आबि जाइ छनि, एकटा ई भाव आबि जाइ छनि जे एको हम नहि। वृक्षमे फल लगै छै, गाछमे फल लगै छै, एखन आमक गाछमे फल सब लागल छै, जाकऽ देखबै। ओकर स्वभाव छै जँ जँ पैघ आ जँ जँ जुआइ छै आ पाकै छै ततऽ ओ नीचाँ झुकैत चलि जाइ छै, और फिर पुनः ओ पकै छै और धरती पर समाय छै। कहबाक तात्पर्य ई धरती के और मानसून के एकटा युगलबंदी छै। मानसून ओहने नीक होय जते धरती के आवश्यकता छै, क्षेत्र के आवश्यकता छै। और बेसी वर्षा सेहो हानिकारक भऽ जाइ छै, बाढ़ि मे होइ छै, और फसल संग जनहानि, पशुहानि, बहुत तरहक हानिए हानि होइ छै। लाभ तखने होइ छै जे नीक मानसून, नीक खेती, नीक किसान, नीक ढंग सँ आधुनिक खेती, तऽ फसल लहलह तऽ करबे करतै। आ जखन फसल लहलह करतै तऽ लोक जे छै से लोकनाट्य परम्परा के जे किछु क्षण याद रखने ओ किए नहि गेतै, और लोहड़ी मना कऽ किछु नव अन्न खेतै। कहबाक तात्पर्य जे हमर जे लोकनाट्य परम्परा अछि ग्रामीण क्षेत्र के, ओ हमर विरासत अइ, हमर संस्कृति अइ। अहाँ पूरा देश मे जायब तऽ हमरा सबके बहुत जगह अपन अपन सबके एकटा धरोहर छनि, सांस्कृतिक सभ्यता छनि, संस्कृत छै। हमसब देश एक भऽ गेलहुँ, और ई संस्कृत के आदान प्रदान सँ किया तऽ ई आधुनिक युग हो गेल अइ, उदारवादी युग अइ। वैश्विक पटल पर लोक आब एक सँ दोसर जगह जा रहल छथि, कारण यातायात सेहो आसान भऽ गेल, आब हवाई मार्ग सेहो बाधा नहि उत्पन्न करैत अछि। और संगे संगे हमर भारतीय रेलवे एहिमे सबसँ बेसी अहम भूमिका निभबै छथि। ओहि हेतु एक दोसर सांस्कृतिक विरासत के हमसब देख रहल छी आ ओकरा परसि रहल छी। आइ मिथिलांचल क्षेत्र के जे मिथिला पेंटिंग अइ विश्व पटल पर ओकर नाम अछि। हमर मखाना मिथिला क्षेत्रक धरोहर जे ओ विश्व पटल पर छा रहल अइ। आ अजुका किसान, हमर किसान जे छथि जे मखान सब बहुतो नहि कमाइ छला है, आब कमाय लगला है, किया तऽ ओकरा विश्व पटल पर आनल गेल। ओ केना आयल तऽ औद्योगिकरण के चलते विश्व पटल पर आर्थिक उदारकरण के द्वारा व्यवसाय के लेल छोड़ल गेल सबके ओहि व्यवसाय संग आगा। एहि व्यवसाय के मूल जड़ यदि जायब ओ अहाँ के भेटता, ओ हमर सबके धरती पुत्र किसान। ओहि किसान के लेल मानसून ओतबे आवश्यक जेना एकटा ककरो प्यास लागल छै तो चाहै छै जे जतेक जल्दी हमरा पानि भेटै तऽ हमर प्राणक त्राण भेटत, यानि हमर प्राण पखिरो नहि उड़ै, ओहिके लेल पानि जरूरी। ओहिना नीक मानसून के लेल किसान से प्रकृति पर निर्भर रहै छथि, और वैज्ञानिक तरीका सँ सेहो होइ छै। दुनूमे अंतरो कहि देलहुँ हैं जे प्रकृति यदि सम्यक पानि दे, यानि ने बेसी

0: ने कम तब फसल जे होइ छै से किसान के लेल एकटा वरदान भ जाइ छै, और यदि ओहिमे बाधा होइ छै तऽ फसल तऽ किछु ने किछु होइते छै लेकिन किसान के मन टूटि जाइत अछि। तैं नीक मानसून नीक फसल के लक्षण होइत छै।
1: अतः कहा जा सकता है कि मानसून भारतीय किसानों की जीवन की एक धुरी है। इससे इसकी पहली फुहार किसानों को मन में एक नई ऊर्जा, उत्साह और आशा का संचार करती है। एक अच्छा मानसून केवल खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करता है। किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है, और किसानों की खुशहाली का सबसे बड़ा आधार एक संतुलित एवं समय पर आने वाला मानसून है।
0: एकदम सत्य कहलहुँ। आप सब किस गप सप करो, अखन हम चर्चा केने छलहुँ बीच में ग्रामीण परिवरिश और हमारे लोक परंपरा नाट्य परंपरा ओकरा कते तक हम संजोग के रखने छी, कि ओकरा हम बिसरि रहल छी, कि ओकरा हम नव पीढ़ी के देव जा रहल छी आ कि नहीं देव रहल जा रहल छी। ई हमर सबके से आगा के बातचीत हैत। ओहिसँ पहले सुनै छी एकटा फिल्म संगीत सुमधुर।

0: तो प्रवीण जी, हमारे पास एक है कार्यक्रम संबंधी सूचना कि रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 तक प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो में से जुड़े अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपना फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4 के बीच। हमारा फ़ोन नंबर होगा 943-00-29353।
1: सत्य कहै छी, एकरा हम फेर पुनः मैथिली में सेहो कहि दै छी, कार्यक्रम संबंधी सूचना अछि रेडियो के बाद श्रोता सबके संग। जी हाँ श्रोतागण, एहि कार्यक्रम में 12वां अंक में रवि दिन 5 जुलाई 2026 के दुपहरिया में 2:30 पर प्रसारित होयत। एहि कार्यक्रम के लेल अहाँ रेडियो से जुड़ के लेल और ओकर अनुभव साझा करय के लेल, रेडियो कखन जीवन में अहाँ के आयल, कखन से अहाँ रेडियो के श्रोता बनलहुँ, कहिया से रेडियो सुनै छी कि नहीं सुनै छी, अपन रिकॉर्ड बात करा सकै छी। एकर फोन नंबर शुक्र दिन 3 जुलाई 2026 को दोपहरिया के 3:30 से 4:30 तक, यानी 1.5 घंटा से अहाँ सबके लेल खोल जा रहल अछि। नंबर टीप लिय, एकर मोबाइल नंबर होयत 943-002-935-3। पुनः सुन लेल जाए, 943-002-935-3। ई छल नंबर, सूचना समाप्त भेल। कार्यक्रम में एखन गीत चुनलहुँ कर हर मैदान फतह, मैदान फतह केओ ओहिना नहि करैत अछि। ग्रामीण जीवन के लोक परंपरा, नाट्य परंपरा या खेल कूद लुका छिपी प्रथम पाठशाला होइत अछि खेल कूद के। आइ काल्हि शहरीकरण के ई दौर में देख रहल छी जे बच्चा सब बस में नीक गाड़ी में भरि कऽ इसकुल जाइत अछि या छोटो सवारी में जाइत अछि, खेल कूद के लेल मैदान छोट पड़ैत अछि। बढ़ैत जनसंख्या आ खेल कूद में आब लोक के दूर जाय पड़ै छै मैदान में। ओहि के लेल नाट्य परंपरा जे छल खास कर ग्रामीण क्षेत्र में, ओकरा विरासत में भेटले, ओकरा में परिवर्तन भेले। पहले स्कूल सब में शनि दिन का हमरा याद है जे एहि तरह कल्चर के कार्यक्रम राखल जाय छले, एक दू घंटा के, जे जे बच्चा में जे गुण छै ओहि प्रतिभा के ओ जेना हुए, चाहे 4 लाइन लिख कर कविता सुना कर हुए या कोनो संवाद कह के हुए या छोट छोट कोनो अभिनय कर के हुए, ककरो मेमिक्री कर के हुए, चाहे जेना हुए, एकटा स्वस्थ परंपरा के जन्म दैत छल। और ओ जे लोक कला छले, नाट्य परंपरा छले, तै में जे अद्भुत आनंद छले, से आप धीरे धीरे हम देखै छी गौण होइत जाइल जे एकाकी होइत जाइत छला। बंधुगण, आइ विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है, एहिमे विश्व पटल पर हो वाला खेल से जुड़ल सौ पत्रकार बंधु के

0: हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। अहाँ सब खेल के पसारि रहल छी और दोसरों तक ओकरा पहुँचा रहल छी, ते के लेल सस्नेह धन्यवाद। आजुक दिन हम सब यह कहब जे एहि कार्य पुनीत कार्य के अहाँ करैत रही, हमर खेल प्रतिभा सब ग्रामीण स्तर से उठि कऽ विश्व पटल पर जाइत, एहि के हम सब हमेशा कामना करैत रहै छी। हमर युवा बच्चा जे छथि ओ खेल में आगा जाइत, पढ़नाइ लिखनाइ तऽ छैहे, संगे संग खेलो जीवन के एकटा आधार होइ छै। खेल सब मात्र शारीरिक मानसिक विकासे नहि होइ छै, एकटा सामाजिक चेतना के सेहो विकास होइ छै। केना एक दोसर के व्यवहार संगे हम एडजस्ट करब रहब तकरो ज्ञान होइ छै, सामाजिक ज्ञान सेहो होइ छै। अनुशासनक ज्ञान तऽ सबसे बेसी खेले सिखबैत अछि और ओहिसँ बेसी सिखबैत छल हमर सबके लोक परम्परा में जुड़ल, जे स्वस्थ लोक परम्परा छल ग्रामीण क्षेत्र में बेसी होइत छल, ओना एखनो कतौ कतौ होइत अछि, लेकिन देखल जा रहल छै एहि युग में वैज्ञानिक युग में ओ छोट छोट परम्परा सँ पाछा छुटि रहल अछि। होली में डम्फा के चोट आब कतौ सुनाई पड़ैत अछि, ओहिना निर्गुण प्राति ई सब कतौ कतौ सुनाई दैत अछि, मात्र ओ मोबाइल में आबि गेल अछि। नीक नीक गायक गायिका सब गबै छथि और मोबाइल संगे हम सब सुनै छी। हम स्वस्थ सांस्कृतिक परम्परा जे छल आपस में मिलकर तकरा की त्याग रहल छी, ई विचार करके वस्तु अछि। एहि पर विचार करबै जे हमर लोक परम्परा जीवित केना रहत और ओकरा अगला पीढ़ी तक केना परोसब। आजुक एहि अंक में समय ई कहि रहल अछि जे हमरा सबके श्रोतागण सब विदा लेबा के बेर आबि गेल अछि, तै समय के पालन हमरा सब के करबाक चाही। वह नीक होइ छै तऽ हमरा प्रवीण के
1: साथ आज के इस अंक से कुशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार मिथिला। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम का 12वां अंक आप सुनेंगे इसी रविवार 5 जुलाई को दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, रिकॉर्ड कराइए अपने अनुभव। शुक्रवार 3 जुलाई को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। नंबर है 9430002935।

0: भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार
3: सुनिएगा शाम 8:15 पर। यह आकाशवाणी दरभंगा है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
4: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
5: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की।

0: झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने।

0: खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stumps Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
2: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India.

0: Seth, saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs. General Seth said his aim would be to build a tech-enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs new army chief outlines Vijay vision, stresses modernization of army. And finally, the Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cells, build from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming their work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में WhatsApp पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैनल अक्वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमी कंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इतलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के करीबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान

0: भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन, पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले दो दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले दो दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले तीन दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कुन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासिर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधही के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा

0: अब प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को खुसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैन-अल-अक़वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख़फ़ीफ़ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकरात करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली के तहत कार, जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह दर ₹2 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण वाहनों और अन्य वाहनों के लिए टोल की दर ₹6 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है।
1: बिहार रोड यूजर फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई, यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी। पहले से इसमें प्रावधान नहीं था, जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: कैबिनेट ने पटना नगर निगम की ओर से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद पटना नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला निकाय बन जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त राशि से शहर की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि मलाही पकड़ी स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत हो जाएगी। इसके लिए 6 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण में अभी तक मेट्रो का परिचालन बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड 0 माइल से होकर भूतनाथ तक ही किया जा रहा था। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के तत्वावधान में बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इधर इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी नागरिकों से अपने

0: कार्य क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के चिकित्सक, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर बिना पंजीयन के प्रैक्टिस कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक केवल निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन पोर्टल पर अपलोड कर राज्य में विधि सम्मत रूप से कार्य कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नगर परिषद दानापुर निजामत के पार्षद पदों के आरक्षण के संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। आयोग ने आधिकारिक सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के DL.ED कोर्स की योग्यता पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 18 महीने की DEL.ED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जुलाई महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान राजद से वैशाली के पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक वार्षिक सौराठ सभा का आज विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सौराठ सभा के दौरान मैथिल समाज के विवाह के लिए योग्य वर वधु की तलाश पूरी करते हैं, साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अरवल जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर तथा सब जूनियर राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट सहित सिगरेट बनाने वाले सामान और 9.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि पहली पाली का मैच पूरा खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। गौरतलब है कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी टीम 11 में शामिल नहीं थे। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 2014 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ग्रामीण मजदूरों को 7 घंटे काम की 300 रुपए मजदूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, भावुक पल, नए आर्मी चीफ सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, फिर पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रभात खबर ने राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, चढ़ावा चोरी के आरोपी के कमरे में मिला रामराज कोष का संदूक, अब तक 80 लाख रुपए हो चुके हैं बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर

0: दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। और इस गीत के बाद
1: छाया गीत।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: तो श्रोताओं, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम का 12वां अंक इस रविवार 5 जुलाई को सुनिए दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम के लिए आप अपने रेडियो से जुड़े अनुभवों को हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, रिकॉर्ड कराइए अपनी अनुभूतियाँ अपने फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। कल शुक्रवार को 3 जुलाई को दोपहर 3 से 4:30 के बीच हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 9430029353 9430029353।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हम पटना से रिले करेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: केंद्र है, आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: कर्ज एक मर्ज।
1: मैं हूँ भैया, रोसार रोते हुए बोले जा रही थी। मैं हूँ ना, बड़े भाई की परेशानी और फिक्र देखकर रोसार से रहा न गया। आखिरकार उसने अपने बिखरे हुए घर को बचाने की आखिरी कोशिश में अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, पर उसे अदा कैसे करेगी ये सोच सोच कर वो दिन रात परेशान रहने लगी थी। जब भी ये जुमला उसके कानों से टकराता तो माजी बुनियादों में चली जाती और फिर खुद से दोहराती, मैं हूँ ना भैया, मैं हूँ ना, या अल्लाह मैं करूँ तो क्या करूँ, न तो मेरी कोई जॉब है और न ही कोई और खजाना। उफ, इंसान कितना कमजोर है और फिर भी तकब्बुर व गुरूर में जीता है। इंसान के हाथ से वक्त किस तेजी से गुजर जाता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उसे लगता है दुनिया का सारा निज़ाम उसी की वजह कर चल रहा है। इंसान तो खुद अपने घर का निज़ाम तक सही से नहीं चला पाता, जो अगर चला लेता तो आज मेरा हंसता खेलता घर यूं न बिखरता। खुद से गुफ्तगू करते हुए रुखसार को कब नींद आ गई और जहन अपनी परेशानी से निजात का रास्ता ढूंढने लगा। उसके कानों में दोनों भाई

कर सकता, फिर भी उसे लगता है दुनिया का सारा निज़ाम उसी की वजह कर चल रहा है। इंसान तो खुद अपने घर का निज़ाम तक सही से नहीं चला पाता, जो अगर चला लेता तो आज मेरा हंसता खेलता घर यूं न बिखरता। खुद से गुफ्तगू करते हुए रुखसार को कब नींद आ गई और जहन अपनी परेशानी से निजात का रास्ता ढूंढने लगा। उसके कानों में दोनों भाइयों की गुफ्तगू गूंज रही थी। अरे भाई, आप परेशान क्यों होते हैं? मेरी जॉब लगते ही मैं आपको बिजनेस के लिए पैसे दूंगा। आप बस दुआ करें, मैं जिस कंपनी में चाहता हूं वहां मेरा काम बन जाए। कई बार अल्लाह भी दूसरों के काम किसी दूसरे इंसान के जरिए ही करवाता है। कई बार दूसरों की दुआ से किसी का काम बना देता है तो कई बार किसी अनजान इंसान को ही मदद के लिए भेज देता है। इस बार उसने भाइयों की मदद एक दूसरे से करवाई और मुझसे बेरोजगार बहन को भी इसमें शामिल कर लिया। छोटे भाई की जॉब लगी तो परेशानी कम न होकर बढ़ गई, जैसा हंगामा घर में कभी न हुआ था। लाडले, तुमने ही तो कहा था जॉब लगेगी तो मेरी मदद करोगे। भैया, आप छोटे भाई से ऐसे मदद की बात कर रहे थे मानो वो उसी के भरोसे बैठे हों। अल्लाह का करना भी कैसा था, जिस कंपनी में लाडले की जॉब लगी उसके लिए भैया ने बहुत दुआएं की थी और उनकी दुआ कबूल भी हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसमें आज अब्बू भी शामिल हो गए। तुम अब लाडले से भी पैसे लोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरा दिया हुआ पैसा डुबा दिया और अब छोटे भाई से पैसे मांग रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ पाते हो लड्डू, तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। कब से कोशिश में हो, तुम्हारी मदद करते करते मेरा सारा जमा पैसा खत्म हो गया है। शादी, बीवी, बच्चे सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं और तुम्हारे साथ में और दो मजीद लोगों को पाल रहा हूँ। अब तो मेरा भी सब खत्म हुआ जा रहा है, जमीन के पैसे भी अब खत्म हो रहे हैं। तुमने कहा था कि अब्बू मदद कर दीजिए, मैं दुगना करके पैसा दूंगा, पर इन 4 सालों में तुमने 1 रुपया भी न दिया। हाँ, लेते जरूर रहे, जवान बहन घर में है, उसके रिश्ते की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। बस हुआ, अब मैं यहाँ लाडले तुम्हें मजीद पैसे नहीं देंगे और अब तुम अपना और बच्चों का कहीं और इंतजाम करो। इस महंगाई में मेरा तुम सब को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। भैया खामोशी से सारी बातें सुनते रहे, खुद गुनाहगार महसूस करते हुए अपने कमरे में चले गए। भाभी और बच्चे भी दूर से ये सब देख रहे थे। इधर अम्मी भी खामोश, डरी सहमी किचन के पास खड़ी रोए जा रही थी। माँ तो माँ होती है पर कुछ कह नहीं पाई, अब्बू के फैसले ने सबको खामोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद भैया कमरे से भाभी और अपना सामान लेकर निकले। हम जा रहे हैं, पर यकीन कीजिए अब्बू, बहुत जल्द मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। इतना सुनना था कि अब्बू ने गुस्से में कहा, जाओ पहले अपने घर को पाल लो, फिर मेरा कर्ज देना। 4-5 सालों से यही सब सुन रहा हूँ। अम्मी ने जाकर भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भाभी ने भैया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी आखिर ये मेरे शौहर हैं, ये जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी, अब परेशान ना हो, आप माँ हैं, बस दुआ कीजिएगा। भाई अम्मी से लिपट कर रो पड़े और खुदा हाफिज़ कहकर चले गए। लाडले के भी कुछ समझ में ना आया कि कब छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई। उसकी जॉब नई नई थी, बार बार कंपनी से फ़ोन आ रहा था, वो अपने कमरे में ही ज़्यादा वक्त रहा। जब अम्मी की चीख निकल गई, लड्डू को रोक लीजिए, तो लाडले अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। क्या हुआ रुखसार, तो कभी अब्बी कहकर मुझसे पूछना चाहा, तो अब्बू ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो भैया को। अब्बू के आगे किसी की न चली और भैया घर छोड़कर चले गए। उधर उनका काम जैसे तैसे चल रहा था। 6 माह बाद जब मैं मिलने गई तो भैया सर पकड़े बैठे थे और भाभी तेल मालिश कर दूं के रट लगा रही थी। रुखसार, तुम ही समझाओ अपने भैया को। अस्सलाम अलैकुम भैया कहते हुए मैं घर में दाखिल हुई। भैया की आंखें सुर्ख और नम थी। क्या हुआ भैया, मुझे बताइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलें डॉक्टर को दिखा लीजिए। नहीं रुखसार, अब तो बस मौत ही मेरा आखिरी हल है। मुझे गुस्सा आ गया, क्या बकवास करते हैं आप बड़े लोग, इधर अम्मी आपके गम में और इधर आप, आखिर कोई तो हल होगा। कोई हल नहीं रुखसार, ये कर्ज मर्ज की तरह बढ़ता जा रहा है पर खत्म नहीं हो रहा है।
तो क्या भैया आपकी मौत से ख़त्म हो जाएगा या फिर ये आपके बीवी बच्चे पर आ जाएगा? और क्या कर्ज से आपकी रूह को मौत के बाद सुकून मिल पाएगा? क्या करूँ?

0: मैं थक गया हूँ, हर बार नई कोशिश और हार का सामना। अब तो ससुराल वालों का भी कर्ज हो रहा है। तभी रुखसार की जुबान से निकल गया, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी रुखसार? भाभी चौंक कर बोली, नहीं मालूम भाभी, पर अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। दरअसल आप लोगों के घर छोड़कर आने के बाद से लाडले की तनख्वाह एक बार भी नहीं आई है, सब टेंशन में है। लाडले कह रहा था, भैया की दुआ की बरकत से मुझे मेरी पसंद की कंपनी मिली और भैया घर छोड़कर चले गए। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है। किस मुंह से भैया से मिलूं? भैया अब बस दुआ कीजिए, कहते हुए रुखसार भाई ऐसे लिपट गई और रोने लगी। भैया ने रुखसार के सर पर हाथ फेरते हुए उसे जाने को कहा, घर जाओ वरना अब्बू नाराज होंगे। जी भैया मैं जाती हूँ, पर आप वादा कीजिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, अपना और सबका ख्याल रखेंगे। मैं हूँ ना। रुखसार की आँख खुल गई और वो भागते हुए लाडले के कमरे में गई, जैसे कोई रास्ता उसे ख्वाब में मिल गया था। भाई एक बात करनी है। जी आपी, तुम्हारी सैलरी आई? लाडले का चेहरा उतर गया। आ जाएगी, तुम एक बात मानोगी मेरी? हाँ हाँ बोलो ना। लाडले उस कंपनी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। देखो भाई, बहुत मुश्किल से तुम्हारी जॉब लगी, पर पहले माँ की सैलरी पर तुमने सबको मिठाई तो खिलाई और सबसे अहम काम करना भूल गए। लाडले चौंक कर, क्या काम? अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च न कर पाए। लाडले शर्मिंदगी के साथ अचानक बोल पड़ा, या अल्लाह, मेरी सैलरी आ जाए और मेरी जॉब रह जाए, मैं हर माह तेरी राह में अपनी कमाई का सदका दूंगा। अल्लाह ने सब के अहद को कबूल कर लिया और अगले ही दिन उसकी सैलरी आ गई। लाडले ने सैलरी का सदका निकाल कर रुखसार के हाथ में देते हुए कहा, मुझे एक दो दिन में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है, तुम उसे देना जो बहुत ज़रूरतमंद है, और हर माह मुझसे याद से ये सदका ले लेना। बहन मैं अगर भूल भी जाऊँ तो तुम मुझे मेरे अल्लाह से किए हुए अहद को निभाने में मेरी मदद करना। रुखसार ने खामोशी से पैसे को रख लिया और ये कहकर के लाडले को रुखसत किया कि तुम टेंशन न लेना, इंशाअल्लाह ये पैसा उस इंसान के पास जाएगा जो सच में बहुत ज़रूरतमंद है। रुखसार दूसरे ही दिन भैया के पास पहुँची और कहा, ये कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो इसे खर्च कर दीजिए, ये चाहे तो अपने कर्ज को अदा करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, मर्जी आपकी है। रुखसार ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? भाई और भाभी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये पैसे अल्लाह ने भेजे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं अल्लाह से आपकी मदद के लिए दुआएं मांग रही थी। एक बहुत नेक दिल इंसान है जो अपने अल्लाह से किए हुए वादे को निभाने के लिए कोई बहुत जरूरतमंद इंसान ढूंढ रहा था, बस मैंने उससे आपका जिक्र कर दिया। उसने वादा किया है कि वह हर माह कुछ पैसे मुझे देगा और मैं उसके पैसे उस इंसान को दूं जो सच में बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। भैया आप बस इंसान के लिए दुआ करें, अल्लाह उसके रिस्क में खूब बरकत दे और आप धीरे धीरे अपने सारे कर्ज से निजात पा जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपका बिजनेस जरूर कामयाब होगा। एक बार फिर अल्लाह पर यकीन करके उसकी रहमत से मायूस हुए बगैर एक और कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। इस तरह एक भाई का सदका दूसरे भाई के कर्ज उतारने के काम आता गया और वो दिन भी आया। भैया ने अपना फोकस अपनी बिजनेस की नई शुरुआत की तरफ की और कर्जा धीरे धीरे उतरता चला गया। साल भर बाद ईद के मौके पर हमारे घर में सच्ची ईद हुई। भैया बहुत तो नहीं पर बहुत कामयाब हो चुके थे। अपनी हिम्मत के साथ और अब्बू का सारा कर्ज उतार कर वो वापिस घर आए। लाडले आज भी अपने अहद को निभाता है और मैं भैया जैसे कर्ज में डूबे हुए भाई को ढूंढती हूँ और उनकी मदद करने की हमारी कोशिश आज भी जारी है। मैं समझ चुकी हूँ कर्ज एक मर्ज है जिसे खत्म करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी और का कर्ज मर्ज की तरह न पड़े, बस यही कोशिश है।
1: समीन, कर्ज एक मर्ज के उन्वान से आपने ये अफसाना अभी समाप्त किया। पेश कर रहे थे सैयद असगर हुसैन, और अब हमारी अगली पेशकश कलाम शायर लीजिए समाप्त करते हैं मजहर जमील से उनके कलाम।

ए खुदकुशी की तरह सांस लेते रहे, खुदकुशी की तरह जिंदगी। आप कब मेरे ख्वाबों में आए भला, आप कब

0: रहे खुदकुशी की तरह जिंदगी।
1: एक गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिए। अर्ज किया है
0: तेरी जो

मुझे आरज़ू है तेरी, मुझे आरज़ू है तेरी, किसी और की नहीं है, मुझे आरज़ू है तेरी, किसी और की नहीं है, तेरी जुस्त

तेरी जुस्त जुस गाफिल, तेरी खाक रह गुजर से मेरी मंजिलें हैं रोशन, तेरी खाक रह

फिर अर्ज किया है, यही गम के चंद लम्हे तो खुशी के राजदां हैं, यही गम के चंद लम्हे तो खुशी के

वो जिएगा कैसे जिसको गम जिंदगी नहीं है। तेरी जुस्तजू से गाफिल। मक्ता अस्कर रहा हूं, मुलादा कीजिए। मजहर का फिक्र फन है तेरी याद की बदौलत। मजहर का फिक्र फन है तेरी याद की बदौलत। तेरे जिक्र से

0: मुझे आरज़ू है तेरी, किसी और की नहीं है, तेरी जुस्तजू से गाफिल।
1: सामिन, कलामी शायर के तहत आप समाप्त कर रहे थे मज़हर जमील को, और इसके बाद हमारी ये अगली पेशकश मौसीकी। मौसीकी में ये पहली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ पीनाज मसानी की है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

शमीन गुलाम अली को आप समाप्त कर रहे थे इस गजल में, और अब अगली गजल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह की आवाज में है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम कर रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मोहम्मद अजीज को अन्य कलाकारों के साथ। लीजिए कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए, फिल्म शहंशाह से। मोहम्मद अजीज के साथ ये आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द आनंद बख्शी के और संगीतकार हैं अमर उत्पल।

और अब लीजिए फिल्म खुदगर्ज का ये गीत सुनिए। मोहम्मद अजीज के साथ ये आवाज़ साधना सरगम की है, फारूक कैसर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मोहम्मद अजीज के साथ अन्य कलाकारों को।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

फिल्म किशन कन्हैया का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था इंदीवर ने, राजेश रोशन का संगीत था और आवाजें मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की थी। और अब लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, खुदा गवाह, ये है फिल्म का नाम, मोहम्मद अजीज के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मोहम्मद अजीज को अन्य कलाकारों के साथ। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म त्रिदेव से। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और मोहम्मद अजीज के साथ ये आवाज़ है साधना सरगम की।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे गाया था मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी ने, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फिल्म थी हम। अब जो गीत आप सुनेंगे उसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, मोहम्मद अजीज के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म है राम अवतार।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम का 12वां अंक सुनिएगा इसी रविवार 5 जुलाई को दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव रिकॉर्ड करा सकते हैं आप हमें फ़ोन कर। फ़ोन कीजिए शुक्रवार यानी कल 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। नंबर हम बताते हैं 9430029353 9430029353। कार्यक्रम संबंधी सूचना से पहले आप सुन रहे थे फिल्म बीवी हो तो ऐसी का गीत, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। अनजान के शब्द थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए। मोहम्मद अजीज की आवाज़ है और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे गायक कलाकार मोहम्मद अजीज के साथ अन्य कलाकारों को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं ढोंढो ताई कुलकर्णी। आइए इनसे सुनते हैं राग शुहा।

ढोंडू तय कुलकर्णी से भी आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में राग देश।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत ढूंढो तय कुलकर्णी की आवाज में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
3: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
3: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे

0: इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता यह है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोतो, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया।

0: अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
9: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
9: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
8: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
10: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
8: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
10: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी। सभी

0: फुसफुसा रहे थे।
1: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा, गद्दी पे बैठ कर
2: झाड़ को मिलना चाहिए
1: जा रहा है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है, आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
4: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
5: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
6: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज, यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
11: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में

0: तारा है।
1: अच्छा सर।
2: सर मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
1: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी, और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।

0: हमारा आदित्य। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब आप आने लेंगे हमारे किन से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म वनवास से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, विजय प्रकाश, महालक्ष्मी अय्यर, मोहम्मद दानिश और मिथुन। गीत रचना शहीद कादरी ने की है, संगीत दिया है मिथुन ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह मनन भारद्वाज की आवाज में फिल्म यारिया 2 का यह गीत। गीत और संगीत मनन भारद्वाज के थे। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिस्ट्री ऑफ टैटू फिल्म से। गायक कलाकार हैं अभिनव शेखर, प्रज्ञा दस गुप्ता। गीत और संगीत दोनों ही अभिनव शेखर के हैं।

आंखों की गुस्ताखियां जी। हाँ श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत विशाल मिश्रा की आवाज में। गीत और संगीत विशाल मिश्रा के थे। आइए सुनते हैं अगला गीत स्ट्रेबिन की आवाज में, फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से। संगीत निर्देशन रोचक कोहली ने किया है। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और फैयाज हाशमी।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता सखी को आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखी हमेशा की तरह आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनाएंगे और हर दिन की तरह आज भी आप वार्ता का आनंद लेंगे। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। आज के बदलते दौर में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक रूप से महिलाओं को घर के कामों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा के प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण ने महिलाओं के लिए नौकरी और व्यवसाय के नए द्वार खुले हैं। आर्थिक सशक्तिकरण ग्रामीण स्तर पर समूह के माध्यम से महिलाओं को छोटी बचत, ऋण और व्यापार शुरू करने में सहायता मिल रही है। महिला स्वरोजगार सरकारी योजनाएं, मैं आपको बता देती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी जैसे योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमी बनाया है। डिजिटल साक्षरता, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने महिलाओं को अपने पैसों का प्रबंधन स्वयं करने की योग्य बना दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से हर परिवार की महिला को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है आर्थिक सशक्तिकरण, जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस संदर्भ में स्वरोजगार समूह महिलाओं को एक मंच प्रदान करते हैं, जहां वे सामूहिक रूप से बचत, ऋण प्रबंधन और व्यावसायिक उद्यमों में शामिल हो सकती है। ये समूह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं, बल्कि उनमें नेतृत्व कौशल और सामुदायिक सहयोग भी की भावना भी विकसित करते हैं। इसके अलावा स्वरोजगार समूह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। आर्थिक रूप से मजबूत होने से महिलाओं का जीवन बेहतर हो रहा है। जब महिलाएं खुद पैसे कमाती हैं तो दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं और घर खर्च में भी अपना योगदान देती हैं। वे घर के जरूरी फैसले भी खुद से लेती हैं और परिवार की आर्थिक ताकत भी बन गई है। बदलते समय में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब वे केवल घर संभालने तक सीमित नहीं रही। शिक्षा और डिजिटल क्रांति और सरकारी योजनाओं से महिलाओं का कार्यबल में प्रवेश दोगुना हो गया है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महिलाएं छोटे व्यापार शुरू कर रही हैं, वे RBI और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं का लाभ भी उठा रही हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डेयरी उद्योग महिलाओं के लिए आय का एक बड़ा साधन बन गया है। हजारों महिलाएं दूध समितियों और कंपनियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहनो इससे न केवल आय बढ़ रही है, बल्कि वे परिवार के या फिर दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। हमारा कहना है कि पहले पशुपालन को सिर्फ घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब यही काम परिवार की बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। दूध बिक्री से हर महीने मिलने वाली आमदनी से घर के खर्च में बड़ी मदद मिल रही है। इससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई से लेकर घर के अन्य जरूरी जरूरतें पूरी होती है। महिलाएं दूध उत्पादक समिति ने गांव की महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है, जहां वे एक दूसरे के सहयोग से

आज जाने की जिद ना करो। यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों का विशेष कार्यक्रम नारी संसार।

आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि पशुओं की सेहत और उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। डेयरी से जुड़ने के बाद महिलाएं अब पारंपरिक तरीके से हटकर पशुओं के चारे और उनके स्वास्थ्य या फिर उचित देखभाल पर भी विशेष ध्यान दे रही है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, अंतराल में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे बदलते दौर में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल से शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 9430029353। सूचना समाप्त हुई। तो बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ताकार हैं हमारी रेडियो सखी विजेता सिन्हा। तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।

नमस्कार, मैं विजेता आज आपसे बात करने जा रही हूँ बच्चों को परीक्षा की तैयारी कैसे कराएं। तो श्रोताओं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी परीक्षाओं को लेकर अधिक सतर्क नहीं होते, वो अपने इम्तिहान को भी खेल समझते हैं। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को आने वाले इम्तिहान की तैयारी खुद करवाएं। श्रोताओं, जब बच्चों के इम्तिहान नज़दीक हों तो माँ को चाहिए कि वो अपना पूरा वक्त अपने बच्चों को दे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे खुद से पढ़ने नहीं बैठते। इसलिए माँ को चाहिए कि वो बच्चों को लेकर खुद बैठे और कोशिश करे कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं, ताकि उन्हें पढ़ने में मन लगे। हो सके तो उन्हें बीच बीच में छोटी सी कहानियाँ सुनाएं या कोई चुटकुला सुना दें, जिससे कि उनका मूड फ्रेश हो जाए और उन्हें पढ़ने में फिर से मन लगे। श्रोताओं, जब भी छोटे बच्चों को तैयारी करवाएं तो सबसे पहले जो आपने उन्हें पहले पढ़ाया था उसे दोहराएं।

0: फिर आगे पढ़ाएं ताकि बच्चों का रिवीजन होता रहे। वो कुछ भी भूले नहीं। जब उन्हें कुछ याद ना हो तो उन्हें उस चीज को खूब लिखने को कहें। बार बार लिखने से दो फायदे होते हैं, एक तो वो चीज याद जल्दी हो जाती है और दूसरा ये कि बच्चों की लिखावट में सुधार भी होता है, मतलब उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। श्रोताओं, जो बातें बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से समझ में नहीं आती तो उस बात को आप प्रैक्टिकल रूप से यदि समझाएं तो उन्हें जल्द समझ में आ जाती है। श्रोताओं, बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे हर विषय पर बच्चे पर्याप्त समय दे सकते हैं, उनका ध्यान हर विषय पर होगा। बच्चों को चाहिए कि वो कठिन विषयों को पहले करें या उन्हें अधिक समय दें। आसान नोट्स तैयार करें और कोशिश करें कि अपने उत्तर कम से कम शब्दों में हो और सही हो, जिससे रिवीजन करना आसान हो। बच्चों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने को कहें ताकि उन्हें परीक्षा पैटर्न समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। श्रोताओं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों का पढ़ाई का कमरा अलग हो। शांत माहौल पढ़ाई के लिए होना बेहद ही जरूरी होता है ताकि बच्चा जो पढ़े वो उसे समझ में आए या उसे हमेशा याद रहे। श्रोताओं, बच्चों का पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, वीडियो गेम जैसी चीजें दूर रखें। पढ़ाई के दौरान बच्चों को छोटे छोटे ब्रेक लेने दें ताकि उनका दिमाग तरोताजा हो जाए। परीक्षा के दिनों में बच्चों के खान पान को लेकर भी सतर्क रहें। उन्हें हरी सब्जियां, फल, दूध अवश्य दें। उन्हें हल्का और सुपाच्य भोजन ही कराएं, जिससे कि पढ़ते समय उन्हें आलस ना हो। याददाश्त अच्छी रहे इसलिए उन्हें ड्राई फ्रूट्स, खासकर अखरोट और बादाम अवश्य खिलाएं। बच्चों को नींद भी पूरी करना जरूरी है, मतलब 6 से 8 घंटे उन्हें सोने दें। जब वो अपनी नींद पूरी करते हैं तो उनमें आलस बिल्कुल नहीं होता और उन्हें पढ़ने में फिर से मन लगने लगता है। बच्चे जो भी पढ़ें उसे वो अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करते हैं, उनसे पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें करते हैं तो इससे उनका रिवीजन होता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई की बातें शेयर करें। श्रोताओं, सुबह की पढ़ाई को महत्व दें। जी हाँ, जब इम्तिहान नज़दीक हो तो सुबह उठकर पढ़ाई करें, खासकर जो चीज़ें याद करने वाली हो उसे अवश्य करें, क्योंकि सुबह का माहौल बिल्कुल शांत होता है। तो ऐसे में बच्चे जो भी पढ़ेंगे तो उन्हें अवश्य याद होगा। इसके अलावा बच्चों को हार ना मानने दें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनकी हर छोटी छोटी कामयाबी पर उनकी सराहना करें, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो श्रोताओं, अपनी बातों के अंत में कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं तो इम्तिहान के दिनों में उनका साथ ना छोड़ें, उन्हें अपना अनमोल समय दें, खुद उनके शिक्षक बने, तो आप खुद ही देखेंगी कि आपका बच्चा सफलता के मार्ग पर किस तरह से अग्रसर हो रहा है। तो अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों, ये बात तो लगभग हम सब लोग जानते हैं कि सुबह उठने के बाद जो भी चीज़ हम सबसे पहले मुंह में खाते हैं या पीते हैं या फिर डालते हैं वो हमारे पूरे दिन, वही हमारे पूरे दिन की मूड, एनर्जी और स्वास्थ्य की दिशा तय करती है। सुबह का पहला नाश्ता ही शरीर के लिए नींव का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह बेड से उठते ही चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो धीरे धीरे ये आदत में बदल जाती है और शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ने लगता है।

मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि चाय कॉफ़ी पीना ही बंद कर दे, कहने का मतलब ये है कि चाय कॉफ़ी की जगह आप गुनगुना पानी पियेंगे तो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कब और कैसे खाती हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर आप सुबह खाली पेट सिर्फ पानी पीने की आदत बना ले तो ये छोटी सी आदत शरीर को कितनी बड़े फायदे दे सकती हैं आपको पता भी नहीं होगा। इससे आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकती हैं। बहुत लोगों के मुंह से हमने कहते हुए सुना है कि पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बचपन से ही पानी पीते आए हैं। जी हाँ, लेकिन असल फ़र्क इस बात का होता है कि पानी कब, कैसे और किस तरह से पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर का सबसे अहम और ज़रूरी हिस्सा होता है। हमारे शरीर लगभग 70% पानी से बना होता है। हम इंसान कुछ दिन बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते। इस वजह से पानी पीने का सही तरीका और सही समय जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे समझ लें कि शरीर में बीमारियां आने की संभावना भी कम होती है। अगर आप गौर करें तो हर इंसान का पानी पीने का तरीका अलग-अलग हो सकता है या होता भी है। बहुत लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग गुनगुना और कुछ खड़े होकर पानी पीते हैं, तो कुछ लोग बैठकर भी पानी पीते हैं, और बहुत सारे लोग तो आराम से बैठ के गिलास में लेकर के पीते हैं। और तो और कुछ लोग बाहर से आते हैं, बोतल के ढक्कन निकालते हैं और खड़े होकर के पानी पीने लगते हैं। वही कुछ लोग गिलास में भी पीते हैं, और कई जगह पर तो हमने भी ये देखा है कि हथेली में भरकर भी पानी लोग पीते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि पानी तो हम सब लोग पीते हैं, पर किस तरह से पानी को पीना चाहिए इस बात को भी ध्यान रखना होगा। आप सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले कम से कम पानी ज़रूर पिए, और खाने के बाद पानी पिए। ज़रूरी हो तो आप खाने के साथ भी पी सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर होगा कि खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पियेंगे, तो ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाकर स्वस्थ महसूस कर सकती हैं और बीमारियों से भी बच सकती हैं। तो बहनों, बातें को आगे भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: प्रदेश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन

0: भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाईची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का श्रोता नलेंगे 2:15 पर। 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना। लोकगीतों का आनंद लेंगे दोपहर काल में 3:00।

संध्याकाल 5 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। युवाणी में श्रोता सुनेंगे तरुण मिथिला, फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे संध्या 5:40 पर। गांव घर कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:10 पर। उसके पूर्व आप सुनेंगे 6:10 पर विद्यापति गीतों को। गांव घर कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे जागरूक गांव। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे।

संध्याकाल 7:52 पर आनंद ले सकेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगर हार। हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। नौ बजकर 30 मिनट पर रात्रिकाल में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों को। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर नोट करें 9430029353। दोबारा सुने 9430029353। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता की आवाज में।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारे मोहम्मद अजीज साहब का जन्म हुआ था 2 जुलाई 1954 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में। उनकी शुरुआती परवरिश कोलकाता में हुई थी, जिससे उन्हें बंगाली और उड़िया भाषाओं में महारत हासिल हुई थी। तो आज हमारे मोहम्मद अजीज साहब का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं इन्हीं के की आवाज़ में फिल्म कहर का यह गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोता मोहम्मद अजीज साहब ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति जैसे प्रसिद्ध गायिका के साथ युगल गीत भी गाए हैं। इन्हें बहुत सारी सफलता और प्रसिद्धियां मिली हैं, खासकर मर्द और मैं मर्द हूँ तांगे वाला, दो फिल्मों ने इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई और सफलता। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का अगला गीत। इस फिल्म का गीत इन्होंने गाया है खुदा गवाह। साथी कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति गीत रचना आनंद बख्शी ने किया है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, मोहम्मद अजीज साहब ने हिंदी, बंगाली और उड़िया फिल्मों में 20,000 से अधिक गाने गाए हैं। वो 1980 के दशक में बहुत सारे हिट गीतों को दिया है। मोहम्मद अजीज को उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में एक अमिट छाप छोड़ी है और उनके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। तो आइए सुनते हैं एक और लोकप्रिय गीत, फिल्म यारो सब दुआ करो। बोल है चिट्ठी आई है, गायक कलाकार मोहम्मद अजीज, गीत लिखा है अनवर फरुखाबादी ने, संगीत बद्ध किया है जसपाल मुनि ने।

0: मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर का यह गीत। गीत रचना आनंद बख्शी ने किया था और इस गीत को अपने धुनों से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म आखिरी रास्ता से गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.
2: Jump.

लक्ष्मीकांत प्यालाल के संगीत दिग्दर्शन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अवी अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म चालबाज से। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल को फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका में।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद ने किया था। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप खुशी क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार ISPT से मलाही पकड़ी तक हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा

0: सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत समृद्ध बिहार थीम पर आयोजित जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था को कमजोर करता है तथा विकास की गति को बाधित करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इधर इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में सभी राज्यवासियों से अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। इंतखाबी कमीशन ने पटना की बांकीपुर असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी होगा और उसी दिन से पर्चा नामजदगी का काम भी शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 जुलाई मुकर्रर है। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफे के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है।

0: निराला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्राइमरी कॉरिडोर के तहत मलाही पगड़ी मेट्रो स्टेशन की तौसी का इफ्तिताह किया और मेट्रो सर्विस की तौसी की। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल खिदमात की तौसी ISBT से मलाही पगड़ी तक हो गई है। इस मौके पर डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शहरी तरक्यात के वजीर नितेश मिश्रा, BJP के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद समेत कई मुअज्जज लोग मौजूद थे। रियासत में आज बिहार चौकसी बेदारी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आला सम्राट चौधरी ने बिहार बेदारी हफ्ते का आगाज़ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत खुशहाल बिहार थीम पर मुनक़िद बेदारी हफ्ते का मकसद बदउनवानी के मामले में सिफर टॉलरेंस की पॉलिसी को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी समाज और सिस्टम को कमज़ोर करती है और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करती है। वजीर आला ने लोगों से बदनुमानी से पाक बिहार की तरक्की में सरगर्म हिस्सेदारी निभाने की अपील की है। इधर इस मौके पर गवर्नर सैयद अता हसनैन ने अपने पैगाम में सभी बाशिंदों से अपने अपने दायरे कार में ईमानदारी और शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देने की अपील की। रियासत में 14 अगस्त 2026 तक 1 करोड़ लोगों की TV स्क्रीनिंग का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी प्रति अमृत ने मिशन मोड में मुहिम चलाकर हदफ को हर हाल में पूरा करने की हिदायत की है। TV से पाक भारत मुहिम की जायजा मीटिंग में बताया गया है कि रियासत की 2,76,00,000 के निशाने वाली आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। मानसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे ज़्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास ज़िले में शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से तनख्वाह कमीशन के अंडर सेक्रेटरी आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफसर एक सुबकदोश मुलाजिम से एरियर की अदायगी के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु जनूबी तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में बिहार के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना इलाका के तहत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना इलाका से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से कसीर मकदार में शराब के साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। मगरबी चंपारण जिले के रामनगर थाना इलाका में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से जबरदस्त आग लग गई। आगजनी के वाकये में लाखों की मालियत जलकर तबाह हो गई। हादसे में एक नौजवान भी शदीद तौर से झुलस गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

0: www.jkssb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB 2026 में कुल 130 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 22/6/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026। अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। आप इस पद की विस्तृत जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nice.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 के कुल 607 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक इसके ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। BOI में क्रेडिट ऑफिसर के 779 पद निकाले गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्ट्रीम के तहत क्रेडिट कार्ड ऑफिसर के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
1: चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स के पद निकाले गए हैं। इसके कुल 275 पद हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 90, पायलट 25, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के 18, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 15, नेवल अपार्टमेंट इंस्पेक्टोरेट ग्रेड के 14 और एजुकेशन ब्रांच में 17। इसके लिए आवश्यक योग्यताएं एग्जीक्यूटिव एवं टेक्निकल ब्रांच के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 60% के साथ इससे संबंधित विषय में स्ट्रीम में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर उम्मीदवार को कट ऑफ तय की जाएगी और उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के किए गए उम्मीदवारों को भोपाल, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम या कोलकाता में 5 दिवसीय SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम रूप से चयन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भारतीय नौसेना अकादमी AJIMALA भेजा जाएगा। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 में 1829 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 14/7/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आवेदक के 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री

0: सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण

0: आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और

0: में बहुत भारी बारिश हुई जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में

0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
1: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 235.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः पान लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म असली नकली से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर का यह गीत। गीत और संगीत दोनों ही रविंद्र जैन के थे। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्यासा सावन से।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गीतों का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर नोट करें 9430029353। दोबारा सुने 9430029353। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले। गीत रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आया सावन झूमके। आवाज दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, गीतकार आनंद बख्शी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और इस गीत को अपने धुनों से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: अपना।
1: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र प्रस्तुत है। लोकगीत कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया
1: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है आगे बढ़ाने चाह रहा है ये सम्मान पा के बढ़िया लगा गांव के फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था उस सब के बना रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जो है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जो है, कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

श्रोताओं, संदेश पूर्व आप सुने थे राखी कुमारी के स्वर में देवी गीत। इसी के साथ लोकगीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फोन नंबर नोट करें, 9430029353। दोबारा सुने, 9430029353। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा, हम कई बार ऐसे हमारा मजाक में बोलते हैं वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड दुलार किया, अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी।
1: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती है।
1: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
1: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे। यानी कितनी सुंदर यादें हैं ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली, की एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए,

0: भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल की भाई, शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है।
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे,
1: बिल्कुल
0: वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था,
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन।
0: बटाए,
1: हाँ
0: इन
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा,
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस से कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है,

ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था? कितना मासूम।

0: और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहां पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के

0: अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
1: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए, ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर सकती है और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
0: पूरे
1: परिवार को होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमान तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था

0: आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
1: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नर्म मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: और आपने जो करें ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए, तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: तो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी सुनते?
0: जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश, अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?

0: बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
1: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
0: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर जेंट्स पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आप सब बहुत पुराना सोचा हूँ मैं तो, 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी,

0: दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
1: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
0: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
1: कौन सा गाना?
0: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
1: खानदान फिल्म का? अच्छा जी
0: जी सर, नूतन फर्नीचर सर फरमा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है
0: जी।
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज

0: क्या आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे?
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ,
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब
0: साहब।
1: तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना। तो साहब फिल्म में इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी जी और बताइए, विविध भारती से कब से?

0: है आपका जुड़ाव?
1: बीट भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर, विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच चाहे गीत,
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मंच चाहे गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सिलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के।
0: हाँ,
1: और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा साल में एक बार आते हैं पेड़ों को
1: फूल? साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा आपके बाग तो, के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा तो हम जो अब सेब खा रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, तत्काल सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना? कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी,

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ
0: जी
1: पे मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं
1: जी
0: अपना कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया
1: मैं
0: आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: हमारी
0: तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत
1: हाँ
0: लेट
1: जी।
0: हालांकि आई है। मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बहरात में क्या कुछ खास, कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय में जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को जब छुट्टियाँ मिलती है तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय, फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ। हाँ
0: आपकी नज़र से वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला।

तरुण मिथिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र भवेश की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ मैथिली सुगम संगीत। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ये मैथिली सुगम संगीत।

कार्यक्रम में श्रोता अभी सुन रहे थे बोध नारायण सिंह को। अगली प्रस्तुति सुषमा कुमारी के स्वर में, ये मैथिली सुगम संगीत।

आहाँ के प्रेम, ये मैथिली सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 9430029353। सूचना समाप्त हुई।

कुंज बिहारी मिश्र के गाए इस देवी गीत के साथ ही घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चुका है। तो अपने रेडियो मित्र भवेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम तरुण मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब पेश है फिल्म संगीत।

ड्रीम गर्ल 2। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मीत ब्रो जोनिटा गांधी जुबिन नौटियाल की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था मीत ब्रो ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे डंके फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था प्रीतम ने।

गोलमाल फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे शेखर और स्नेहा पंत की आवाज़ों में। विशाल ददलानी और कुमार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था विशाल शेखर ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गाने को संगीत दिया था प्रीतम ने। फिल्म संगीत आप पुनः एक बार सुनेंगे शाम 7:52 पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया है।

0: सभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। विद्यापति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जागरूक गांव, खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:52 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा आज रात 8:15 पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फोन नंबर नोट करें, 9 4 3 0 0 2 9 3 5

तीन ने। रिकॉर्डिंग के लिए समय याद रखें, शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना कुंज बिहारी मिश्र, राम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक और प्रेम कुमार मल्लिक को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। निर्वाचन आयोग पटनाक बांकेपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावक तारीखक घोषणा कऽ देलक अछि। एहि सीट लेल 30 जुलाई के वोट खसाओल जायत। चुनावक अधिसूचना 6 जुलाई के जारी होयत आ ओहि दिन सँ नामांकन पत्र भरबाक काज सेहो शुरू भऽ जायत। उम्मीदवार 13 जुलाई धरि नामांकन कऽ सकैत छथि। 14 जुलाई के नामांकन पत्रक जांच होयत आ नाम आपस लेबाक अंतिम तिथि 16 जुलाई तय कयल गेल अछि। वोटक गिनती 3 अगस्त के होयत। ध्यातव्य अछि जे भाजपाक अध्यक्ष नितिन नवीनक इस्तीफाक कारणे ई सीट खाली भेल छल, जाहि कारणे ई उपचुनाव भऽ रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे राज्यक सभ प्रमंडल मे निगरानीक विशेष अदालत बनाओल जायत। एहि संग सभ जिला मे निगरानी थाना आ सभ अनुमंडल मे निगरानी ओपी खोलल जायत। मुख्यमंत्री कहलनि जे सरकार पारदर्शी शासन लेल TTT यानि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी आ ट्रस्ट के सिद्धांत पर काज कऽ रहल अछि। ओ लोक सभ सँ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेबाक मे आगू बढ़ि कऽ हिस्सा लेबाक अपील कयलनि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताहक शुरुआत सेहो कयलनि। हमर संवाददाता जनौलनि जे बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकारक सभ कार्यालय मे कर्मचारी सभ सँ सतर्कताक शपथ दियाओल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ पटना मेट्रो रेल परियोजनाक प्राथमिकी कॉरिडोरक अंतर्गत मलाही पकड़ी धरि मेट्रो सेवाक विस्तार के हरियर झंडा देखौलनि। संगे ओ खेमनीचक आ मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशनक उद्घाटन सेहो कयलनि। आब पटना मे मेट्रो रेल सेवाक विस्तार ISBT सँ मलाही पकड़ी धरि भऽ गेल अछि। एहि रूटक लम्बाइ 6.2 किलोमीटर अछि और ई दूरी मात्र 15 मिनट में तय भऽ जायत। ISBT सँ मलाही पकड़ी धरिक भाड़ा 30 रुपया तय कयल गेल अछि। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कतेको गणमान्य व्यक्ति मेट्रो में यात्रा कयलनि। राज्य में आबय वाला 14 अगस्त धरि 1 करोड़ लोकक TV स्क्रीनिंग करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मिशन मोड में अभियान चला कऽ एहि लक्ष्य के पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि। TV मुक्त भारत अभियानक समीक्षा बैसक मे बताओल गेल जे राज्यक 2,76,00,000 लक्षित आबादी मे सँ एखन धरि 39,00,000 लोकक जांच भऽ गेल अछि, जे कुल लक्ष्यक मात्र 14% अछि। बेंगलुरु दक्षिण तालुकात मे एकटा नम्हर चट्टान खसबा सँ 7 प्रवासी मजदूरक मृत्यु भऽ गेल अछि। स्थानीय प्रशासनक अनुसार दिवंगत लोक सभ मे बिहारक रहय वाला मजदूर सेहो शामिल छथि। महिला आ बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेल नामांकन मंगलक अछि। ई पुरस्कार 5 सँ 18 सालक बालक बालिकाक असाधारण उपलब्धि लेल देल जायत अछि। नामांकन पत्र जमा करबाक अंतिम तिथि 31 जुलाई अछि। मंत्रालय जनौलक जे एकरा लेल नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर कयल जा सकैत अछि। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेलकूद समाज सेवा

विज्ञान आ प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसँ नीक काज करयवला बालक बालिका के देल जाइत अछि। एकर अतिरिक्त ई पुरस्कार कतौ कठिन परिस्थिति में असाधारण साहस आ बहादुरी दिखाबय वाला बालक के सेहो देल जाइत अछि। सकरी आ रैयाम चीनी मिलक सहकारी समितिक सदस्य बनवाक लेल आवेदन शुरू भऽ गेल अछि। इच्छुक गन्ना किसान 30 जुलाई 2026 धरि आवेदन कऽ सकैत छथि। मधुबनी जिलाक ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक

0: मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर आ वधुक संबंध तय करबाक लेल अबैत छथि। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्थाक अनुरूप वंशावली आ गोत्रक मिलान कऽ विवाह प्रस्ताव पर विचार कयल जाइत अछि। प्रदेश में मानसून सक्रिय भेला सँ राज्यक कतेको जिला में मूसलाधार वर्षा भेल अछि। मौसम विभागक पूर्वानुमान अछि जे काल्हि राज्यक बेसी भाग में वर्षा होयबाक संभावना अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत जागरूक गाम सुननिहार समस्त श्रोतागण के आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार संगहि गोर लगे छी अनिल भाई।
1: खूब प्रसन्न रहो आशुतोष भाई, आई बृहस्पति दिन है, आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छी कार्यक्रम जागरूक गाम। तो आई ए कार्यक्रम में हम सब गप करब खाली विशेष क जागरूकता संदर्भ में।
0: निश्चित
1: सबसे पहिने गप करब जे ग्रामीण महिला के लेल कुटीर उद्योग एकटा रोजगारक नीक साधन बन सकैए। आवश्यकता गप के जे पुरना जे सिस्टम छल, जे पुरना पद्धति गाम घर में छल, ओकरा बिसर गेल छी, ओकरा फेर से जगा क ओहि दिस लाग जेबाक।
0: ई रोजगारे टा के नै आत्मनिर्भरता के एकटा सशक्त साधन सेहो बन सकैत अछि। संगे गीत नाद का आनंद सेहो लेब और जे कतो गप सप केलहुँ हँ सेहो सब सुनब। मुदा अहाँ जे कहलहुँ हँ कि सबसे पहले आजुक विषय जे अछि ओहि पर अपना सब पहले चर्चा कऽ ली कि प्राचीन काल से अपना सब देखै छी अनिल भाई जे ग्रामीण क्षेत्र में भारत में अपना सबके कुटीर उद्योग जे छल से महिला और ग्रामीण सभक लेल रोजगार आय और आत्मनिर्भरता के एकटा महत्वपूर्ण माध्यम रह चुकल अछि।
1: देखियो जखन महिला लोकनि कुटीर उद्योग के ओहिसँ जे आमदनी होइ छनि ओकर अर्जन करै छै तऽ ओ अपने आत्मनिर्भरता बनबे करै छथि, संगे हुनकर परिवार आ समाज के सेहो लाभ होइ।
0: निश्चित रूपसँ और सबसे पैघ बात तऽ ई अछि जे एहिमे कम पूंजी, लग पासक संसाधन आ पारंपरिक जे अपना सभक कौशल अछि ओकरे आधार पर महिला सब घर बैसल आन आन प्रकार के कुटीर उद्योग संचालित कऽ सकै छथि।
1: महिला जखन आत्मनिर्भर होइए तऽ हुनका में आत्मविश्वास आ संगे संग अपना सँ निर्णय लेबाक क्षमता में सेहो विकास होइए।
0: निश्चित रूप से ग्रामीण महिला सभक लेल कुटीर उद्योग केवल आजीविका के माध्यमे टा नहि बल्कि आत्मनिर्भर जे अपना सभक समाज केना बनत ओकर मजबूत नींव अछि। ई महिला सभक आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान आ नीक भविष्य केना हुनका भेटनि एकर एकटा प्रभावी देग अछि।
1: देखियो ग्रामीण महिला लोकनि के लेल कुटीर उद्योग आर्थिक स्वावलंबन आ सशक्तिकरण के मुख्य आधार अछि। कम पूंजी स्थानीय कौशल सँ चलय वाला ई उद्योग जेना हस्तशिल्प, पापड़, सिलाई कढ़ाई, एकरा घर बैसल महिला लोकनि के रोजगार दैत अछि। महिला के आय में वृद्धि होइए, संगे ओ अपन परिवार आ समाज में आत्मनिर्भर बनै छै। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण में कुटीर उद्योग के बड्ड बेसी महत्वपूर्ण स्थान है।
0: बहुत बेसी, क्योंकि कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण परिवार सभक आय में वृद्धि होइत अछि और जे अपना सबके रोजगार के एकटा पैघ समस्या अछि अनिल भाई, ओहो यानी कि बेरोजगारी कम होइत अछि और लोक सब अप

0: अपने गाम में अपनों लेल रोजगार बना ले छथि आ दोसरों के लेल अवसर तैयार कऽ दै छथि। एहिसँ जखन पलायन एहन समस्या अपना सब चर्चा करैत रहै छी ओकरा अपना सब दूर करबामे मदद कऽ सकै छी।
1: संगे संग एकर लाभ के संदर्भ में जँ गप करी तऽ वित्तीय स्वतंत्रता, जखन ग्रामीण महिला लोकनि गामक महिला लोकनि कुटीर उद्योग सँ आमदनी करै छै तऽ अपन छोट मोट जे आवश्यकता होइए ओहि काजक लेल पुरुष वर्ग पर निर्भर नहि
0: करै
1: छै। आत्मसम्मान में वृद्धि होइ छनि, आत्मविश्वास में वृद्धि होइ छनि। एकर अतिरिक्त कुटीर उद्योग के जे प्रमुख प्रकार अछि जेना हस्तकरघा बुनाई, खाद प्रसंस्करण जेना पापड़ भेल, अचार भेल,
0: अदौरी
1: तिलौरी, मसाला भेल, अदौरी भेल, बहुत तरहक एहन चीज अछि जेकरा कम पूँजी मे अहाँ
0: अपना सब तैयार
1: करे पर कऽ सकै छी।
0: ठीक है कहलहुँ। और संगहि अनिल भाई, सरकार सभक द्वारा सेहो देखै छी अपना सबके जे विभिन्न योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आसान ऋण सुविधा, संगे संग स्वयं सहायता समूह और बहुतो रास माध्यम से अपना सबके कुटीर उद्योग के बढ़ावा देल जा रहल है।
1: देखियो, भारत सरकार आ राज्य सरकार ग्रामीण महिला लोकन के सशक्त बनेबाक लेल नवार्ड जेहन संस्थाक माध्यम से ऋण आ अनुदानक व्यवस्था सेहो करै।
0: निश्चित तौर यदि आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और नीक बाजार अपना सबके उपलब्ध कराओल जाए तो ई उद्योग राष्ट्रीय जे अपना सबक अर्थव्यवस्था अछि ओकरा नव दिशा दऽ सकैत अछि की?
1: तऽ आशुतोष भाई, गप करब बहुत रास गप करय के बहुत दिनक बाद भेंटघाट भऽ रहल अछि।
0: अरे अहाँ लगमे बैसै छी तऽ हम बहुत किछु सीखै छी अनिल भाई, मुदा कनी क्षणिक जे छै से अपना सब
1: आशुतोष भाई, साँझक बेर अछि आ साँझक समय मे भगवतीक पूजा अर्चना तऽ गामे गाम, अंगने अंगने भऽ रहल अछि।
0: और संगे अपना सब देखते छी जे प्राचीने अपना सबके मिथिलाके परम्परा रहल अछि जे साँझमे ग्राम देवताके पूजा करै लए सबटा मैथिलानी और भगवतीके जतऽ कतहु चाल रहै छनि ओतऽ साँझ दै लए सब जेबे करै छथि।
1: नहि, साँझक बेरमे भगवती गीत हेबेटा करैए।
0: निश्चित, तऽ सुनी एकटा सुन्दर सन भगवती गीत, तकर बाद फेर हेतै गपशप।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
4: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्री आमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: आशुतोष भाई, एहि संदेश सँ पहिने हमसब भगवती गीत सुन रहल छलहुँ। देखियौ, एकटा चीज जीवनमे एहन देखबामे अबैए जे लोग अपन परेशानीके, थकानके कम करऽके लेल किछु एहन वस्तुके सेवन करै छथि जाहिसँ लाभ तऽ हुनका हेबे नहि करै छै, हानिक सम्भावना माने पूरे 100% कहि सकै छी। कहलो गेल छै
6: निश्चित रूप
5: सँ नशाके जे भेल शिकार आ उजरल हुनकर घर परिवार,
6: संगे संगे जे विद्या

0: विद्यार्थी छथि जे युवा छथि अगर ओ एहि रास्ता पर आगू बढ़ि जाइ छथि तऽ जे लक्ष्य ओ पाबऽ चाहै छथि ओ कहियो पाबि नहि सकै छथि। ताहि दुआरे निश्चित रूपसँ अहाँ जे ई विषय कहलहुँ हँ बहुत नीक अछि।
1: तऽ आइ हमसभ एहने विषयसँ सम्बन्धित एकटा भेंट वार्ता सुनै छी, नशे की लत, निदान आ उपायके सन्दर्भमे। भेंट वार्ताकार छथि संदीप शाह, हिनकासँ गप कऽ रहल छथि रंजना झा। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अछि हमहूँसभ ध्यानसँ सुनी।
0: सुनल जाय।
2: आइ दरभंगा आकाशवाणीके स्टूडियोमे उपस्थित छथि संदीप शाह जी, जे ड्रग इंस्पेक्टर अर्थात औषधि निरीक्षकके पद पर दरभंगामे कार्यरत छथि। आइ हिनकासँ नशा मुक्तिके विषयपर जानकारी प्राप्त करब। संदीप शाह जी, अहाँके दरभंगा आकाशवाणीके स्टूडियोमे बहुत स्वागत अछि।
3: जी, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरुआत करूंगा, से यस टू लाइफ नो टू ड्रग। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि संतुलित जीवन, परिवार एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए नशे को ना कहें।
2: एकदम एकदम सत्य कह भी जाए छे। देखियो संदीप शाह जी, जे हमरा लोकन एकटा मूल मंत्र जनै छिए जे स्वास्थ्य सबसँ पैघ धन अछि, कि नहि? आ एहि स्वास्थ्य मे जो अगर कोनो तरहक अपन आदत के कारणे ओहि स्वास्थ्यमे धीरे धीरे घुन लागऽ लागए, रंग बिरंगके समस्या आबऽ लागए, ओ तऽ बहुत पैघ दुखद विषय भऽ जाइत अछि आ रंग बिरंगके कारणके घटना बनि जाइत अछि। तैं एहि स्वास्थ्य रक्षाके लेल कोनो तरहक नशा जे अछि ओ कखनोसँ हितकर नहि अछि। तऽ आइ एहि सम्बन्धमे अपनेसँ हम बहुत रास जानकारी लेबऽ चाहै छी, जे कहल गेल अछि जे नशा जे अछि से नाशक कारण अछि, एहि विषयमे अपने की कहब अछि?
3: जी, नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। विश्व में जितने भी अपराधी घटनाएं होती है, उसमें नशा से संबंधित कारोबारियों की बड़ी भूमिका रहती है। नशा न केवल व्यक्ति के जीवन एवं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह राष्ट्र के आर्थिक रूप से खोखला करता है और परिवार और समाज और देश के लिए अभिशाप के समान है।
2: निश्चित रूप से
3: हाल के दिनों में ऐसा देखने को आया है कि सूखा नशा का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ गया है।
2: अच्छा।
3: जिसके रोकथाम के लिए कानून, सरकार, समाज और व्यक्ति को एक दिशा में काम करेंगे तभी हम लोग भारत देश को अपने नशा से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे।
2: निश्चित रूप से। देखियो संदीप शाह जी, एखन अहाँ नशा के विषय में कहलिए तो एकटा जे बहुत साधारण विषय बनि गेल अछि जे आजुक जे युवा पीढ़ी सब छथि उनका में छोट छोट अखने अहाँ सूखा नशा के विषय में कहलिए तो एहि सब तरहक जे प्रवृत्ति बहुत बढ़ि गेल छै, तो ये आदत कोना लगैत अछि, नशाक आदत कोना लगैत अछि, एहि के विषय में की कहब चाहै छी?
3: जी जी, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूँ कि नशे की जो शुरुआत होती है ना, लगभग 95% केस में ये बच्चे या व्यक्ति जो है शौकिया तौर पर,
2: अच्छा,
3: या दोस्त यार या पार्टी में देखा देखी करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोल मॉडल हो बच्चे का या व्यक्ति का रोल मॉडल हो, या घर परिवार में कोई नशे का उपयोग पहले से कर रहा हो, तो वैसे देखा देखी की मेरी ये शुरुआत होती है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कोई बहुत व्यक्ति शारीरिक रूप से काम कर रहा हो, तो अपने शारीरिक को तो ऐसे शुरुआत करते हैं कि मुझे कुछ नशा करेंगे थोड़ा आराम मिल जाएगा, इस मामूली तौर पे इस नशे की शुरुआत होती है। परंतु ये नशे कब लत में लग जाएगा उस व्यक्ति को भी पता नहीं है,
2: नहीं
3: और उस बच्चे को भी पता नहीं चलता है, और उसके जब एक बार लत लग जाता है तो सामान्य जीवन वो व्यक्ति जी नहीं सकता है।
2: सही बात है।
3: जी,
2: एकदम सही बात छै, जे नशा के जहन आदत लाग गेल तऽ हम तऽ एते तक देखै छी संदीप जी जे नशा के जिनका आदत लागल छन उनका भोजन से बेसी अइ पर अभिरुचि रहै छन, भोजन ला ओते परेशान नहीं रहै छथि जते ओ नशा के लेल रहै छथि। तऽ ई जे उनकर शरीर के खोखला बनबैत जाइए दिनोदिन, ई नशा जे छै से शरीर के खोखला बनबैत अछि, रंग बिरंग के अपराध के मतलब की कारण बनैत अछि, तऽ एकर जे ई नशा जे अछि, नशाक प्रवृत्ति जे अछि, एकर लक्षण की सब छै?
3: जी जी, देखिए जैसे कि व्यक्ति नशा का उपयोग करने लगा,
2: हाँ,
3: तो उसमें सबसे पहले उसको शारीरिक जो चीजें है ना, बहुत सारे लक्षण उसको दिखाई देने पड़ने लगते हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे उस व्यक्ति या बच्चे के आंख भारी रहेगा और आंख लाल रहेगा, बच्चा जो है अनहाइजेनिक कंडीशन में रहेगा या व्यक्ति अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने लगेगा,

0: गंदा कपड़ा पहनेगा, उसके जो सोने का जो पैटर्न है या प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगा। कई बार होगा क्या कि व्यक्ति रात रात भर जगते रहेगा अथवा रात रात भर सोते रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा कि उसका वजन कम होने लगेगा, और क्या होगा कि अगर उसको नशा का लत लग गया है तो समाज से या घर परिवार या दोस्तों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। वो जो उसकी पहले की प्रवृत्ति है, जो हॉबीज है, उसमें पूरा पैटर्न उसका चेंज रहता है।
1: अच्छा, वो अपने आप में रहते नहीं है, तो स्वाभाविक छे जो ओकर जे प्रवृत्ति छे सबटा अलग देखवा में
0: जी, जी, जी, जी, जी।
1: आ देखियो जे ई जे नशा के आदत लग जाय छे, तो जे कोनो चीज के आदत जो अगर लग जाय छे तो ओकरा रोकब या रोकथाम करे में बहुत बेसी समय लगे छे संदीप
0: जी,
1: कि नहीं?
0: जी, जी।
1: मुदा ई जे से एकटा बहुत पैघ कारण दिनो दिन बनल जा रहल है, कारण स्वास्थ्य ल के नहीं, बहुत तरह के एकर आन कारण बन रहल है ई नशाक प्रवृत्ति। तो एकर रोकथाम केना कैल जाय आ एकर जागरूकता अभियान के लेल की सब कैल जाय, तो पहले रोकथाम कोन हिसाब से कैल जाए ताई पर कनी अपने चर्चा कर।
0: जी जी जी, देखिए इसमें सपोज हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस व्यक्ति को नशा की लत लग गई है, उस व्यक्ति को समाज से, परिवार से या दोस्त से, उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको सपोर्ट की आवश्यकता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये नहीं समझना है कि वो नशा में आदमी लत लग गया है तो वो व्यक्ति खराब हो गया है, वो ये हमको समझना है कि वो व्यक्ति बीमार है और उसको इलाज की आवश्यकता है। तो उसको हमको मनोवैज्ञानिक रूप से उसको सपोर्ट करना है और मनोचिकित्सक से दिखाना है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है।
1: अच्छा।
0: ये बहुत बड़ा फायदा करता है नशे के लत वाले व्यक्ति को, उसको रिकवर करने में, इलाज कराने में। दूसरा चीज़ क्या है कि हर एक जिला में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। हर एक जिला में नशा मुक्ति केंद्र है, हर एक अस्पताल और सामुदायिक केंद्र पर भी नशेली दवाओं को जो निर्भर व्यक्ति है उनको परामर्श और इलाज के लिए फ्री में सुविधा उपलब्ध है,
1: निःशुल्क परामर्श।
0: जी जी जी जी। इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति या समाज के या नशा करने वाला व्यक्ति ही अपने प्रयास से भी अगर चाहता है कि मुझे सहायता की जरूरत है, तो वो जिला प्रशासन से, ड्रग डिपार्टमेंट से अथवा हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है। और इसका एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी एम्पावरमेंट के द्वारा एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2020 को।
1: अच्छा।
0: जिसको हम लोग बोलते हैं नशा मुक्त भारत अभियान। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा किया गया है। इसमें परिकल्पना ये कही है कि हम अपने भारत देश को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकना है। इसका एक टोल फ्री नंबर भी है 1-444-6। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1-444-6 यह टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे कोई भी व्यक्ति, संगठन, समाज के व्यक्ति जो मादक पदार्थ या नशा मुक्त केंद्र से संबंधित जानकारी चाहते हैं वह इस पे कॉल करके सहायता ले सकते हैं।
1: विशेष जानकारी यही नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर प्राप्त कर सकते
0: हैं। जी जी।
1: संदीप शाह जी, अखन जे एतेक बात अहाँ बतेलियै है तो ओकर रोकथाम कोना कैल जाए ए विषय में जानकारी भेलै, तो जागरूक हेबाक लेल वह छे जे ओहन जे नशा करे वाला व्यक्ति छ तिनका सब कोई सहयोग करें, उनका कते गोटे की विशेष परिस्थिति में सेहो एकर सेवन करे लागै छ कि नहीं? विशेष परिस्थिति के मारल जना हम सब कहै छियै तहु स्थिति में नशाक सेवन कऽ लै छथि, कतेक संगत में आबि के सेहो नशाक सेवन करय लगै छथि। तो ओहन जगह पर अहाँ के कहबै जे उनका जागरूक करब, उनका से नीक व्यवहार करब, उनका साथे जे एकटा मनोवैज्ञानिक के रूप में जे उनका साथे बातचीत करब, जैसे कि उनका दिमाग पर के असर जे छे से नशा कम करबाक लेल धीरे धीरे प्रेरित
0: करे। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति नशा के लत से में पड़ गया है वो मुक्त भी होता है और सामान्य जीवन जीवन में सक्षम हो जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है।
1: अई तरहक उनका मन में ई भावना होबाक चाहिए। तो एखन अहाँ जतेक बात कहलियै तो ओ शिकायत के लेल वह जे टोल फ्री नंबर छै वही टोल फ्री नंबर पर
0: जी, जी, जी, टोल फ्री नंबर है। एक और बहुत बढ़िया मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा श्रोता लोगों को
1: जी, हाँ
0: कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है।
1: अच्छा।
0: नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक मानस का डिजिटल पोर्टल है। मानस डिजिटल पोर्टल है क्या कि मानस डिजिटल पोर्टल एक हेल्पलाइन है और इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक, संगठन, एनजीओ जो है वो मादक पदार्थ या नशीली पदार्थ के दुरुपयोग करने से संबंधित अथवा अन्य कोई भी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।
1: अच्छा।
0: ये भारत सरकार के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा है। इसका भी एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर है 1-9-3-3।

0: अच्छा 1933।
1: जी। और ये बहुत ही अच्छा मानस पोर्टल काम करता है डिजिटल रूप से। इसको आजकल मोबाइल में भी हम लोग ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, इस पोर्टल को हम लोग यूज़ करके कहीं भी शिकायत, यह 24x7 आवर काम करता है
0: अच्छा
1: और उस पर डेलीगेटेड ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे, और बहुत ही गहनता से किसी भी कंप्लेन को या कोई भी जानकारी दिया जाता है उसके संबंधित पदाधिकारी को, इसको वो ट्रांसफ़र करते हैं।
0: अच्छा एक विषय में विस्तृत जानकारी यहाँ के 24 घंटा भेट सकी है।
1: चौबीसों घंटा, चौबीसों घंटा रहता है।
0: हाँ
1: इस
0: हाँ
1: पे नंबर एक बार आप चाहें तो अपने श्रोता को दोहरा सकते
0: हाँ हाँ
1: हैं,
0: एकदम
1: वन
0: दोहरा
1: वन
0: दियो
1: नाइन डबल थ्री
0: श्रोता लोग, कहीं अई नंबर पर 1933 जे कहलत है 1933 नंबर पर जे नशा मुक्ति से संबंधित कोनो तरहक जो अगर शिकायत अच्छे ओकर निवारण चाहे छी, ओहिसँ कोनो संदर्भित विषय में जानकारी चाहे छी, तो अई नंबर पर विशेष जानकारी लेल जा सकैत अछि। हमर जतेक श्रोता लोकनि छथि या आइ के जे युवा लोकनि छथि, अपने उनका किस संदेश देबऽ चाहबन अपना माध्यमसँ ई नशा के लत जे अछि ओहिसँ कोना जागरूक होइत, ओकर रोकथाम के लेल अपने किस संदेश देबऽ चाहबन?
1: मैं यही कहूंगा कि युवा पीढ़ी अपने देश के भविष्य हैं,
0: निश्चित
1: देश उनके भविष्य के लिए चिंतित है, वो नशा को यूज नहीं करे। और किसी भी दोस्त यार अगर कोई नशा के लत से अगर ग्रसित है तो सामाजिक दायित्व को निभाते हुए जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई है, टोल फ्री नंबर है या डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको आप सहायता जरूर प्रदान करें। या वैसे व्यक्ति जो मादक पदार्थों का इलीगल काम करते हैं,
0: जी
1: दुरुपयोग
0: हाँ
1: करते हैं, उनके विषय में भी आप जरूर जानकारी साझा करें। विधिवत जो नियम संगत कार्रवाई होती है वो उन पे जरूर होगी।
0: निश्चित
1: और
0: रूप
1: एक
0: से
1: और चीज़ यहाँ पे है, अगर आप मानस पोर्टल पे किसी वैसे व्यक्ति का जानकारी देना चाहते हैं जो मादक पदार्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनका इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या अवैध रूप से व्यापार कर रहे
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो उस मानस पोर्टल पर अगर आप कंप्लेन देते हैं, आप ईमेल आईडी से भी दे सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है मैं बराबर info.ncb
0: अच्छा
1: manas@gov.in। मैं फिर दोहरा देता हूँ, info.ncb manas@gov.in। इस पे भी ईमेल के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से जो आदमी सूचना देते हैं अगर वो चाहेंगे तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जाती है
0: गुप्त
1: और कार्रवाई की जाती है।
0: देखियो बहुत नीक गपक जानकारी देलिए। एहि लेल देखियो संदीप साह जी, जे ई एकटा बहुत अहम मुद्दा अछि नशाक कारण की अछि आ नशा के प्रवृत्ति बहुत दिनोदिन बढ़ते देखबा में आबि रहल अछि, जे हमरा लोकनि सब दिन अखबार सँ समाचार देखै छियै, एनाहियो समाचार सँ भेटैत रहैया एकर विषय में जानकारी। तऽ एहि विषय में आइ अहाँ दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत नीक जेका जानकारी देलिए, ताहि लेल अहाँ के बहुत धन्यवाद।
2: अनिल भाई, एखन अपना सब सुनि रहल छलहुँ ई भेंटवार्ता नशा के लत कारण और निदान। भेंट वार्ताकार छलथि संदीप साह, हिनका से गप कऽ रहल छलथि रंजना झा। तब बहुत नीक और बुझा बुझा कऽ कहलथि जे केना अपना सब अगर सही रास्ता पर आगू बढ़ै छी और नशा एहन चीजसँ दूर रही और सङ्गे अपन सङ्गी साथियोके अगर दूर राखै छी तऽ कतेक नीक हैत ने।
3: देखियौ ई तऽ भेल सलाह गप, हम ई कहब जे अपन सभक प्रान्तमे प्रतिबन्धित अइ एकर सेवनसँ, जँ आलोकमे अबैए तऽ दण्डक भागी सेहो बनि सकै छी, तऽ सदिखन दूर दूर दूर रही।
2: आओर सबसँ पैघ गप तऽ ई अछि अनिल भाई, जे एकटा उम्रमे होइ कि छै जे सङ्गी साथीके प्रभावमे अहाँ जे छै से भटकैके स्थितिमे आबि जाइ छी, तऽ अहाँके निश्चित रूपसँ अपन अभिभावकके सङ्ग रहबाक चाही आओर पढ़ाइ लिखाइसँ दूर कखनो नहि हेबाक चाही।
3: देखियौ एहि सब चीजक जे आरम्भ होइ छै ने, विलासिताके रूपमे होइ छै, बादमे आरामदायक आ अन्तमे आवश्यक आवश्यकतामे बदलि जाइ छै।
2: निश्चित ढेरो सपना रहै छनि युवाके, विद्यार्थीके, तऽ ओ चाहै छथि जे ओकरा जल्दीसँ जल्दी पूरा करी, एहि शॉर्टकटके चक्करमे ओ गलत रास्ता अपनिया लै छथि। मुदा जे अहाँ कहलहुँ हँ अगर सही तरीकासँ अपना सब आगू बढ़ी तऽ निश्चित रूपसँ सफलता अपना सबके भेटबे करत की। आओर अपना सबके जे ई प्रोग्राम अछि जागरूक गाम, एहिमे सदैव अपना सब इएह प्रयास करै छी जे केना हमरा सबक श्रोता जे छथि से अपनो जागरूक होथि आओर सङ्गे सङ्ग अपन

0: लग लगेज के जते लोग छथिन हुनको जागरूक करैत रहै।
1: देखियौ, हमर सबके उद्देश्य यह रही है जे खास कर एहि कार्यक्रम में एहन गप करी जाहिसँ लोक के समाज के लाभ हुए आ संगे संग हुनका में जागरूकता आवे।
0: तो आब घड़ी के सुई कह रहल अछि जे अपना सब गाम घर के समेटी और खेती गृहस्थी में अन्नदाता किसान भाई लोकन के करियन स्वागत और नमस्कार।
1: हमू सब गोटे के स्वागत, सब गोटे के नमस्कार। देखियो, खास कर अपन सबक मिथिलांचल में दू सांझ में एक सांझ तक भात चाहिए। आ भातक जोगाड़ तखने भ सकैए जखन नीक जकाँ धानक खेती करी।
0: निश्चित निश्चित, ठीके कहलौ हँ। मुदा हम एकटा बात कहब जे अपना सब कोन क्षेत्र में छी और अपना सब के माटि में कोन उपयुक्त जे अपना सब के रहत चौरक कोन किस्म निक रहत, एकरा सब के बारे में पहले निक जानकारी लो ली ओकर बादे आगू बढ़ी की।
1: निश्चित रूप से देखियौ, धानक जे फसल है एकर खेती मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में कैल जाइए। एकर उन्नत खेती के लेल नीक तापक्रम, नीक जल धारण क्षमता, चिकनी माटि आ पर्याप्त मात्रा में पानिक आवश्यकता हो।
0: ठीक है कहलो हाँ।
1: जे नीचा वाला धान के खेती है ओहो में अपने खेती कऽ सकै छी। मुख्य रूप से धान के जे खेती करे के विधि है, एकटा तो होइए जे रोपनी वाला विधि, दोसर होइए श्री विधि। रोपनी वाला विधि में पहिने बिचरा खसा कऽ ओकरा जे छै कनेक गाछ के नमहर कऽ लै छी, ओकर बाद फिर ओकरा रोपै छी।
0: और सबसे पैघ गप तो ई अछि अनिल भाई जे अपना सब नीक धानक पैदावार के लेल जे अगर करऽ चाहै छी तऽ तैयारी बहुत महत्वपूर्ण छै ने। जे तैयारी अपना सब अगर नीक जकाँ करै छी तऽ अपना सबके फसिल नीक प्राप्त हेबेटा करैए। जेनाकि जोताइ, सबसे पहले खेत के जोताइ कऽ लेबाक चाही, एहिसँ माटि जे अछि से ढीला भऽ जाइत अछि और खेत में हवा के संचार बढ़ि जाइत अछि।
1: देखियौ, संगे संग धान के खेती के संदर्भ में गप करी ने तो एकर खेती आरंभ नर्सरी से हुई है। उचित बिया के चयन करब बड़ बेसी
0: महत्वपूर्ण।
1: कतेक बेर किसान भाई लोकन महग बिया आ खादक व्यवहार करे छै मुदा सही से उपजा नहीं भेटे छै। एकर कारण की हुए कि ओकरा रोपा से पहिने जे छै उचित रूप से नीक जकाँ जे छै बिया के चयन नहीं कर, खेत के नीक ढंग से देखभाल नहीं भेल, ते बिया के मूल्यवान भेनाई महग भेनाई जरूरी नहीं है। अहाँ ई कह सकै छी मौसम आ भूमि के गुणवत्ता के आधार पर चयन करो।
0: निश्चित निश्चित, नीक किस्म के बिया के चुनाव धानक नीक पैदावार के लेल एकटा महत्वपूर्ण गप अछि। और बिया के चुनाव जे अपना सब करै छी तऽ ओहि समय किछु बात के ध्यान राखी, जेनाकि अपन क्षेत्रक लेल उपयुक्त जे अपना सबके किस्म हैत ओकरे चयन करी, रोग प्रतिरोधी किस्म जे हुए ओकरा वरीयत आदि उच्च उपजा देबे वाला किस्म के चयन करी। और संगहि संग जे अपना सबके देखियौ, बच्चा कका कहितो छथिन जे अपना सब खेती करै छी तऽ पूर्वमे जे केओ खेती केने छथि हुनका लगमे कनि बैसी नहि, कनी गप कऽ लेला से की होइ छै जे कोन समस्या आयल, केना अपना सबके आगू ओहिमे काज करबाक अछि, एहि सब सम्बन्धमे अपना सबके जे छै से नीक जानकारी भेट जायत।
1: देखियौ, धानक रोपनी के सही समय जँ गप करी ने तऽ जून मासक तेसर सप्ताह सँ लऽ कऽ जुलाई मासक तेसर सप्ताह धरि होइए।
0: ठीक है,
1: एहिसँ पहिने पिछला मासमे हमसब नर्सरी वाला काज केने रही। नर्सरी मे जे जखन गाछ जे छै कनिक नम्हर भऽ जाइए तऽ ओकरा उखाड़ि कऽ फेर जे छै से दोसर ठाम प्रत्यारोपित करै छै। धानक खेतीक लेल मौसमके बड्ड बेसी महत्वपूर्ण भूमिका होइए। तापक्रम धानके खेतीक लेल 16-30 डिग्री सेल्सियस नीक मानल जाइए। बरखा 100-200 सेंटीमीटर जे छै से बरखा हेबाक चाही।
0: अच्छा, और संगे संग अनिल भाई खर पतवार के नियंत्रित करबाक लेल सेहो अपना सबके किछु तरीका अपनायल जा सकैत अछि, जेना कि निकौनी कमौनी खेतक तैयारी के मध्य जे छै से और संगहि बुआई के बाद सेहो हाथ से निकौनी कमौनी कयल जा सकैत अछि। हालांकि पैघ खेत में हाथ से निकौनी कमौनी केनाय मुश्किल भऽ सकैत अछि,

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड के है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी वही गली नली है, वो पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: हाँ आशुतोष भाई,
4: हाँ हाँ,
3: हम सब गप कर रहा छो धानक फसल के संदर्भ में ना।
4: ठीक है,
3: गप कर बहुत रास गप कर के पहने एक सुनी सुंदर सन गीत
4: सुनल जाए।

0: खूब सुंदर। एखन जे हमसब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार श्याम मोहन मिश्र। आ देखियौ, भातक उपाय तऽ भेलै, तरकारियोक उपाय तऽ हेबाक चाही।
1: निश्चित निश्चित।
0: तऽ आब हमसब एकटा भेंट वार्ता सुनै छी। ओ तरकारी एहन तरकारी अइ ने जे बहुत रास रोगके नियन्त्रणमे सहायक।
1: अच्छा।
0: आओर प्राय बर्ख भरि भेटैए, आब तऽ कोनो तरकारी एहन नहि अइ जे नहि भेटैए,
1: नहि भेटैत हुए,
0: मुदा समैया तरकारीके स्वाद नीक होइ छै। बारीक तरकारी आरो अपूर्व होइए। ओ अछि रमतोरै। तऽ रमतोरैके खेती कोना करी, की तत्घतै, एहि सन्दर्भमे जानकारी प्राप्त करी। भेंट वार्ताकार छथि डॉक्टर नीरज कुमार, आ हिनकासँ गप कऽ रहल छथि आशुतोष कुमार झा। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अइ ने से हमहूँसभ ध्यानसँ सुनी

0: आकाशवाणी दरभंगा से हम आशुतोष कुमार झा एखन हमरा संग छथि डॉक्टर नीरज सहायक प्राध्यापक उद्यान सब्जी विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से तो आई हिनका से हम बात करे छी भिंडी के खेती के संबंध में।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भिंडी एक प्रमुख सब्जी फसल है जिसको किसान भाई बरसात के मौसम में भी लगाते हैं। तो इसको लगाने का दो मौसम है
0: सर, जना कि अहाँ कहलो हाँ कि ई हमरा सब दिसका एक प्रमुख तरकारी में से है राम तोरई जकरा कहे छे। तो सबसे पहले जखन कोनो तरकारी लगबे छी अपना सब तो ओकर प्रमुख जे किस्म छे तकर चयन करै छी और भूमि केहन हेते तैयो पर अपना सबके ध्यान राखे पड़ै छै।
1: जितनी भी सब्जी फसल है उसके लिए बलवी दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो उपयुक्त मानी जाती है और जल जमाव की समस्या से मुक्त होना चाहिए
0: जी।
1: और ये ध्यान दें कि मिट्टी में आप जो भी उर्वरक का उपयोग करें वो उसमें ध्यान दें कि जो अनुशंसित मात्रा है

0: और वह मिट्टी जांच के उपरांत ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और खेत की तैयारी वगैरह अच्छी तरह जुताई करके उतीन और प्रति हेक्टेयर लगभग 200 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद को आप एक महीने पहले जो खेत की तैयारी के समय करते हैं उसमें लगाएं। और जहां तक नेत्रजन फॉस्फेट पोटास की मात्रा है उसको एक सामान्य रूप से जो अनुशंसा की जाती है कि उसमें 120, 60 और 50 इस अनुपात में आप उपयोग करें। बीज की बुआई के समय आप जो स्फुर एवं पोटास की पूरी मात्रा और नेत्रजन की एक तिहाई मात्रा का आप जब बीज की बुआई करते हैं के समय जब आप खेत की अंतिम तैयारी करते हैं उस समय आप उपयोग कर लें। और खेत का अच्छी तरह से समतलीकरण करके आप इसकी बुआई शुरू करें।
1: बड़ा नीक अहाँ कहलहुँ हाँ जे सबसे पहले अपना सबके खेत का नीक जगह जोत देबाक चाही, ओकर बाद जे अनुशंसित जे खाद छै ओकरा देबाक चाही, और संगहि किसान भाई सबके माटिक जाँच सेहो करेबाक चाही।
0: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोग कभी कभी मिट्टी जाँच हमको हमारी बचत करता है, जितनी हर फसल की अपनी आवश्यकता है और मिट्टी में जितना जाँच के आधार पर हम देते हैं कि जितना आवश्यक मात्रा होती है उर्वरक का उतना ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारा बेकार जाता है, पैसा भी बेकार जाता है एक तरह से, दूसरी तरफ मिट्टी की उर्वरा शक्ति पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
1: दुष्प्रभाव पड़े जी हाँ। तो माटिक तैयारी और
0: संतुलित उर्वरक का उपयोग
1: केला के बाद हाँ। जे प्रमुख किस्म के बेर होबे छै तो ओइमे अपना सबके की ध्यान रखबाक चाही?
0: जी देखिए अभी तो बहुत सारी किसान भाई लोग हाइब्रिड किस्मों का उपयोग करते हैं, तो जो विभिन्न आपका जो प्रचलित जो संकर किस्में हैं आप उसका उपयोग करें। ऐसे हम जो हम लोग कर रहे हैं जो सरकारी संस्था की भी द्वारा भी विकसित किस्में हैं, जैसे काशी क्रांति वो अभी के समय में काफ़ी अच्छा कर उसका उपज है
1: जी।
0: और आप देखें कि इसमें ये इसमें एक भिंडी में एक समस्या आता है पीत सिरा रोग, तो ये इस समस्या से मुक्त है यह किस्म, और इसका आप सही और अन्य किस्मों का आप चुनाव करके उपयुक्त किस्मों का आप अच्छा उपज ले सकते हैं।
1: जेना कि अहाँ कहलिए है कि भिंडी में एक समस्या छे पीत सिरा रोग, तो और की समस्या आबि सकै छे, कौन सब कीट व्याधि छे, एकरा से बचाव के लिए अपना सब की कह सकै छे?
0: हाँ देखिए इसमें एक इसको पहले आप जो बीज आप लेंगे तो उसको जो ऐसे किस्मों का चुनाव करें जो ये समस्या अधिक उपज क्षमता, अच्छी गुणवत्ता और कीट एवं रोगों के प्रति सहिष्णु किस्म हो। तो उसके बाद है कि बीज को आप रात भर 24 घंटे फुलाकर और फिर बीज का उपचार करें। कोई भी सब्जी फसल लगाते हैं हम लोग बताते हैं कि उसका बीज का उपचार करके कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक जैविक फफूंदनाशी भी है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा करके आता है 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज करके, और बीज को फुला हो उसमें उनका आप करें। इस तरह से आप अच्छा फसल आप प्राप्त करके अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं।
1: एकरा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त और कौन कौन उपाय छे जे अपना सबके करवाक छे और कतेक दिन में फसल तोड़े लायक भ जाए छे?
0: इसमें लगभग अब देखिए वो जैसे मिट्टी और इसके अनुसार होता है, जैसा आपका देखभाल के पे डिपेंड करता है, 1.5 महीने में लगभग आपका शुरुआत हो जाता है फसल और अच्छा उपज आप प्राप्त कर लेते हैं। 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज आता है, आप लेके किसान भाई इससे लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत सुंदर। एखन अपना सबका डॉक्टर नीरज सहायक प्राध्यापक उद्यान बड़ा निक जगह बुझा के कहले था जे केना अपना सब राम तोड़े के तरकारी लगा सके छी और ऐसा बढ़िया मुनाफा कमा सके छी, मुदा जरूरत है सुरक्षा और सावधानी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ का।

आशुतोष भाई, एखन हमसब भेंट वार्ता सुनि रहल छलहुँ। रमतोरई के खेती के संबंध में भेंट वार्ता कर छलथि डॉक्टर नीरज कुमार, हिनका से गप कर रहल छलथि आशुतोष कुमार झा। नीक जानकारी भेटल। आब हमसब एकटा सुंदर सन गीतक आनंद ली।

0: खूब सुंदर। एखन जे हमसब गीत सुनल छलहुँ गीतक कलाकार पूनम कुमारी, आशुतोष भाई चलैत चलैत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयसँ जे मौसम संबंधी सूचना टटका प्राप्त भेलै से कहियो तऽ।
1: एखुनका जे पूर्वानुमान अछि ओहि अवधिमे उत्तर बिहारके अधिकांश स्थानमे गरज चमक वज्रपात आओर तेज हवाके सम्भावना अछि। एखुनका जे तापमान अछि से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक सम्भावना आओर न्यूनतम 22 से 26 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक अनुमान अछि।
0: सङ्गे एहि सङ्ग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रमके समय सम्पन्न हेबाक अछि। किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लेल जाय। नमस्कार आशुतोष भाई।
1: नमस्कार अनिल भाई।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
1: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
0: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
1: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
0: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रिपल टी से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी की विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी, साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी थाने और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी खोले जाएंगे। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में ओपी बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन के लिए ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
1: इसमें हम लोगों ने ट्रिपल टी की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण भी किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हो गया है। पूरे रूट की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह दूरी 15 मिनट में तय होगी। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मेट्रो में यात्रा भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांव के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान आज तिरुपति में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को

0: रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूती मिलने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर सुशासन, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सस्ती कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 50% या 17,50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 50 कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। यह योजना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी वाले 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में लागू होगी। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कोल्ड स्टोरेज संचालक बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में से अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले कई श्रमिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए

0: एक मजबूत आधार प्रदान करती है। मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक सौराठ सभा की आज से शुरुआत हुई। मिथिला की इस प्राचीन वैवाहिक परंपरा में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर और वधु के संबंध तय करने के लिए पहुंचते हैं। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्था के अनुरूप वंशावली और गोत्र का मिलान कर विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के पौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत भताई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दो छात्राओं की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाराही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी आईटीआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 60,000 रूपये लूट लिए। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन के निर्देश पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 प्रखंडों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 3,000 लीटर पेट्रोल के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई है। पेट्रोल के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, TTT से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISPT से मलाही पखड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री

0: राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
1: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
2: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
1: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: दरभंगा जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से मौसम में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने के बाद भी लगभग एक सप्ताह तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कृषि कार्यों पर इसका असर पड़ा है। खासकर धान की रोपनी का कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है, जिससे किसानों को समय पर बुआई को लेकर चिंता बनी हुई है। इधर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर केवल धान की खेती पर ही नहीं बल्कि बागवानी और फल उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले की सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम हयाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में हुआ। इसका शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन और पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में पंचायतों के समग्र विकास, जन भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सशक्त विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्यों को जमीन पर उतारना है। उन्होंने बताया कि पंचायत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें 9 प्रमुख विषयों के तहत लागू किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल विकास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं शामिल है। केवटी प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता के मामले में दरभंगा प्रमंडल के लोक प्राधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त ने बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी है। इससे पहले लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था और पद अच्युत की अनुशंसा करने को कहा था। इधर पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफोड़ किया है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नवादा, गया

0: अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने असली अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 12-12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। मामले में लहरियासराय और नगर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने 48 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उसकी आवाजाही को आसान करना है। वितरण के बाद सभी लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही यूडी आईडी कार्ड के महत्व और उसके मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। जिले की रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और उपलब्ध संसाधनों तथा आधारभूत संरचना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मिल के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बग्गा और त्रिभुवन गांव में मुहर्रम जुलूस के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बग्गा गांव के 14, त्रिभुवन के 12 और खिरमा पथरा गांव के 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

प्यासा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी और सुनीति चौहान की आवाजों में। प्रवीण भारद्वाज के लिखे इस गाने को संगीत दिया था डब्बू मलिक ने।

कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। अनिल पांडे के लिखे इस गाने को संगीत दिया था संदेश शांडिल्य ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला गाना सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़ें, अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 9430023। सूचना समाप्त हुई।

संग्राम फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति ओम। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था विशाल ददलानी और शेखर ने। इसी के साथ फिल्म

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक एहि नव अंक में अपने सभक स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। अपने सभक संग आइ हम छी राकेश चंद्र नंदन। अपने लोकनि जनैत छी जे कार्यक्रम सिंगरहारक माध्यमे हमरा लोकनि अपन साहित्य, संस्कृति ओ परम्परा सभक बहुत रास गप करैत छी। हमरा सभक संस्कृति केर जे मूल तत्व अछि, ओकर संरक्षण संवर्धन लेल हमरा लोकनि सदैति लागल रहैत छी। बंधु लोकनि, कोनो ठामक जे संस्कृति होइत अछि, ओ ओहिठामक जे वासी लोकनि, हुनका लेल बड़ महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि आ अपना सब लेल ई गौरवक विषय अछि जे एहिठामक सांस्कृतिक परिचिति एहन रहल अछि जकर अनुकरण आन ठामक लोक सब सदैत करैत रहला अछि। एहिठामक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली वाणी, आचार विचार, पहिरन ओढ़न, गीतनाद, भाषा साहित्य, पठन पाठन, आस्था विश्वास, चिंतन मनन आदि सब तत्व हमरा सभक संस्कृति केर प्रमुख अंग रहल अछि। एहिठामक परम्परा सब एहन सुदृढ़ रहल अछि जे आइयो हमरा सभ लेल ओ अनुकरणीय बनल अछि। एहिठाम खान पान विशिष्ट परम्पराक रूपमे रहल अछि आ ओ एहिठामक कृषि व्यवस्थाक अनुरूप अछि। ओना तऽ समयक संग परिवर्तन अवश्य आयल अछि, मुदा कम बेस ओ परम्परा सभ ओहिना बनल अछि। बंधु लोकनि, हमसभ एहि सब विषय पर आगाँ आओर गप करब, मुदा एखन सुनैत छी ई गीत।

0: श्रोता लोकन हम सब एखन पार्वती मिश्राक स्वर में ई भगवती गीत सुन रहल छलहुं। हम सब अपन संस्कृति ओ परंपरा सभक जे गप करैत रही तो मोन पड़ल जे अपना सब ओहिठाम गीत नादक सेहो सुदीर्घ परंपरा रहल अछि। आ कोनो विधि व्यवहार हुए आ कि पावनि तिहार, एहि सब में गीत नादक प्रधानता रहैत अछि। आ कोनो विधि व्यवहार आ कि उत्सवक जे अवसर हुए तो प्रारंभ हमरा लोकनि भगवती गीत सँ करैत रहलहुँ अछि। एखन कार्यक्रम में सेहो एखन हमरा लोकनि भगवती गीत सुन रहल छलहुँ। अपना सब ओहिठामक एक गोट और विशेषता अछि, ओ अछि मधुर बोल आ ठोर परहक मुस्कान। संगहि एहिठामक परिधान सेहो विशिष्ट रहल अछि। सादगीपूर्ण जीवन ओ आध्यात्मिक चिंतनक भूमि रहल अछि अपना सभक मिथिला, तऽ ओहि अनुरूप सब किछु एहिठाम देखना जाइत अछि। ओना एखन अपन कार्यक्रममे हमसब एक डेग आगाँ बढ़ैत छी आ सुनैत छी ई काव्य पाठ।
1: गंगा यमुना सिंध सरस्वती पवित्र धार बहत जहिठाम, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। सत्य अहिंसा मार्ग जकर हो, मानवता केर गीत प्रखर हो, वेद पुराण कुरान बाइबिल केर पाठ होइत हो आठो याम। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। ज्ञान और विज्ञान में आगू नहि रहलहुँ कहियो हम पाछू, हमरे ही अनुसंधानक बल सँ जग छूलक अछि उड़ि कऽ चान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। त्याग और बलिदानक पन्ना मानिक सँ जरल जनैछ जहान, पुष्पक अभिलाषाक अनुरूपे तत्पर सीमा पर तनल जवान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम

जकर थिक हिंदुस्तान। सोनक चिड़ै कहबै छल जग में लूट नष्ट कैलक सुल्तान, तैयो सत्कार केलक सब धर्मक तैं कहबै छ जगदेश महान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। उत्तर ठाढ़ मणि मुकुट हिमालय, दक्षिण पवित्र हिंद सागर नाम। बाम बाही बंगालक खाड़ी, दहिन हाथ अरब सागर जलधाम। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जगत मातु एतहि केर बेटी, जगत पिता बेटा बनि राम। योद्धा सौ त्यागी जोगी धर, अवतरित होइत रहला अभिनाम। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। धर्म कोनो हो कोनो कोनक निर्विघ्न पसारल अपन टांग। सबहक सत्कार केलक ई धरती, अमृत द केलक विस्पान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जे न देश केर काज अबै छत, हुनकर जन्म निरर्थक निष्काम। अरे माइक बेटा वह कहबै छत, जे देश ले करत किछु साँझ बिहान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जाति धर्म केर झगड़ा छोड़ू, भ्रष्टाचारक धार के मोरू। अहाँ थिकहुँ लाल भारत के, जग पुनः बनाबी भारत महान। जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के नाम जकर थिक हिंदुस्तान। हमर दोसर कविता के शीर्षक अछि शहीदक सुमन। ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी, ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्ज गीत गाबी। भगवान स्वार्थ बस भव शरणागति क दाता, एसना में पड़ल सदिखन स्व बन जगत विधाता। ओ फूल हम शहीदक पथ पर कोना बिछाबी, ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्ज गीत गाबी। मातृभूमि लय समर्पित रक्षार्थ जे डटल छथि, निःस्वार्थ सेवा भावे सीमा लय जे अटल छथि। ओहि कर्म वीर त्यागी लय कोना क ओ फूल बीछ लाबी, ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। हे मातृभूमि रक्षक, हे युद्ध वीर हमर संरक्षक। माईक महान संतत जे प्राण पुष्प करथि अर्पित, ओ चरण रज छी अनुपम हम मस्तक सँ जँ लगाबी। ओ फूल नहि जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। हो मंगल अहाँक सदिखन, हे भारत के मंगल दाता। सब आस करत पूरा जग के परम विधाता। अछि भाव स्नेह अर्पित किछु दीप त जराबी, अछि भाव स्नेह अर्पित किछु दीप त जराबी। ओ फूल नहि जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी, ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्ज गीत गाबी। हमर तेसर कविता गीत के रूप में मिथिल

बंधु लोकनि, सुधीर चंद्र झा सँ एखन हमरा लोकनि काव्य पाठ सुनि रहल छलहुँ। कार्यक्रम संबंधी एक गोट सूचना अछि, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ बंधु लोकनि, एहि कार्यक्रमक 12वां अंक रवि दिन माने 5 जुलाई 2026 के दुपहरिया 2:30 पर प्रसारित होयत। एहि कार्यक्रम लेल अपने लोकनि रेडियो से जुड़ल अपन अनुभव हमरा सब सँ साझी कऽ सकैत छी। रेडियो कखन अहाँक जीवन में आयल, कखन अहाँ एकटा रेडियो श्रोता बनि गेलहुँ, जखन अहाँ रेडियो सुनै छी तऽ केहन लगैत अछि। अपने लोकनि रिकॉर्ड करा सकै छी अपन फोन कॉल्स शुक्र दिन माने काल्हि 3 जुलाई 2026 के दोपहरिया 3:30 से 4:30 के बीच। हमरा लोकनिक फोन नंबर हैत 9430029353। हमरा लोकनि अपन साहित्य संस्कृति और परंपरा सभक जखन गप करै छी तऽ एखुनका समय में किछु परिवर्तन अवश्य देखना जाइत अछि। ओना परिवर्तन तो संसारक नियम अछि, मुदा

ई परिवर्तन विकास लेल हेबाक चाही आ ओहिमे जखन कोनो प्रकारक ह्रास देखना जाइत अछि तऽ ओकरा उचित कथमपि नहि मानल जा सकै छै। हमरा सबके एहि दिशामे चिंतन करबाक आवश्यकता निश्चित रूपसँ अछि आ एखन अपन कार्यक्रममे हमरा लोकनि कनेक आगाँ बढ़ै छी। पहिने ई महेशवाणी सुनि लै छी, फेर हमरा लोकनि शब्द विमर्श दिस सेहो चलब।

संत कुमार झा गौल एहि महेशवाणीक बाद आब हमरा लोकनि चलैत छी शब्द विमर्श दिस। ओना शब्द विमर्श करबासँ पूर्व अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह, आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपन प्रतिक्रिया आ कि सुझाव हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही। अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सभक संबल बनैत रहल अछि। जँ पत्र द्वारा अपने लोकनि अपन प्रतिक्रिया आ कि सुझाव पठबय चाहैत छी, एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आ कि सुझाव अपने लोकनि पठा सकैत छी। आ आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि टघरब, गरकैत जकाँ बहब, एहि लेल टघरब शब्द केर प्रयोग करैत छी। आ टघरा, टघरा भेल टघरबाक जे प्रवृत्ति वाला, ओकरा टघराह कहैत छैक। एकटा शब्द अछि झकारब, झमारसँ ऊपर नीचा करब, एहि लेल झकारब शब्द केर प्रयोग हमरा लोकनि करैत छी। आ झटकब, झटकब भेल तेज बसातक संग बरसब। एखन तऽ बरसातक जे समय अछि, कखन तेज बसातक संग जे बरसैत अछि तऽ कहै छी झटकब। आ झटकारब, झटकारब भेल झट झट डेग बढ़ायब, एहि लेल झटकारब शब्द केर प्रयोग हमरा लोकनि करैत रहलहुँ अछि। आ देखू ने, कार्यक्रमक जे समय ओ सेहो सम्पन्न हेबा पर अछि, तऽ हमरा सेहो झट झट डेग आगाँ बढ़बऽ पड़त, मने अपन कार्यक्रमके आब समटऽ पड़त। तऽ एहि आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ अबैत रहत, अगिला भेंट धरिक लेल हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी।

0: केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक

0: प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक

0: पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal.

आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतीजे से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैनुल अक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैनुल अक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जाँच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस

0: 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाबता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलग सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खिदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज मोहम्मद अजीज हिंदी और बंगाली सिनेमा के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक, आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 2 जुलाई 1954 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था।

अपनी बहुमुखी आवाज के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद अजीज एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। इन्होंने 1980 और 90 के दशक में कई सुपरहिट गाने गाए। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में हिंदी फिल्म अंबर से की। तो आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम

इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में हिंदी फिल्म अंबर से की। तो आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं के गाए कुछ सदाबहार नगमे।

त्रिदेव फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

शहनशाह फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अमर उत्पल ने। आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज के गाए कुछ सदाबहार नगमे।

मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आई मिलन की रात, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।

राम अवतार फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।
1: यह आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
1: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार मूलिकुलम कोच्चुकुटन

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Mathu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hai. Shri Amal Antony ek parshva gayak, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: कंटिन्यूइंग विद द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक, वी नाउ ब्रिंग यू मलयालम लाइट वोकल सॉन्ग्स प्रेजेंटेड बाय श्री अमल एंटनी। श्री अमल एंटनी इज अ प्लेबैक सिंगर, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions. Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charum geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar evam kavi Shri Rafiq Ahmed ne likhe hai. इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, Shri Amal Antony presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye, sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet sunte hai.
1: The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बासुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K.X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C.N.K. Murthy on flute and Shri C. Shri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhavtarini. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7%

0: रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security.